अंशी हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रीतम हैं। बहुतों को प्यार करके जीवन का जीवन दे दिया। एक बार इनका पाणी ग्रहण स्वीकार करो। देखो आप लोग पाणी ग्रहण स्वीकार करते हैं, कैसा भी हो जीवन निर्वाह करते हैं, इनके तो वेद यश गाते गाते थकते नहीं हैं। ये तो अजान बाहु अभेद भुज दंड मूल है, इनके हाथ में हाथ देने में तुम्हें क्या परेशानी हो रही। चाहे जितना भटक लो अनंत जन्मों में, विश्राम तो यही मिलेगा आके। काहे को लंबी यात्रा करोगे, इसी जन्म में विश्राम गृह में पहुंचो। श्री वृंदावन विश्राम, महाप्रभु कह रहे हैं विश्राम स्थल कहां है, श्री राधा जुग चरण निवास, प्यारी जू के गोरे चरणारविंद के समीप। जब हम विचारधाराएं देखते हैं तब लगता है तुम समर्पित क्या हो, शरणागत क्या हो। हम श्री जी के आश्रित होने के लिए व्याकुल हैं, श्री जी से मिलने के लिए व्याकुल हैं। ये तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। अपने लोग तो विषय भोग के लिए व्याकुल हैं, कहलाते हैं श्री जी के और चाहते हैं विषय सुख, चाहते हैं संसार का अनुकूल भाव। कैसी विपरीतता है, कैसी विपरीतता, बड़ा विचित्र माया का आकर्षण है। अब इस विचित्रता में, भारी विचित्रता गुरुदेव की कृपा है। बस ऐसी दुरंत माया को परास्त करके आपको निकाल के श्री जी से मिला दे, वो एक ही शब्द है केवल, वाहे गुरु बोलो, सदगुरु बोलो, गुरु बोलो, गुरुदेव जय गुरुदेव कुछ भी बोलो, वो एक ही है जो आपको बचा सकता है, दूसरा नहीं। बड़े कृपाल, कृपा की मूर्ति, कृपा रूप जो वप धरो, साक्षात प्रिया प्रीतम की कृपा मूर्तिमान देह धारण करके हमें उस महासुख में निमग्न करने के लिए घसीट रहे। अपने लोग संसार के थोड़े सुख देने वाले पर विश्वास कर लेते हैं, समर्पण कर देते हैं, भाई तुमने हमारा ये सहयोग किया, जरूरत पड़े तो प्राण दे देंगे। गुरुदेव ने वो अलभ्य लाभ, हरिवंश नाम, राधा वल्लभ नाम, राधा नाम, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, आश्रय, छाती में बैठा लेना, ये छाती में बैठालना है, अपने हृदय अपने जीवन धन को दे दिया आपको। कितने तुम गंदे विचार वाले हो। देखो एक लोटा कोई पानी पिला दे, उसको जब देखेंगे तो नम्र आंखें हो जाएंगी। प्यास से व्याकुल था, एक बार उसने पानी पिलाया था। अनंत जन्मों से सुख और शांति के लिए ही मरते चले गए, आज तक जगह नहीं मिली। आज प्रभु की कृपा ने गुरुदेव रूप में आके मुझे स्वीकार किया और आनंद धाम की यात्रा करा रहे हैं। हम कैसे मलिन स्वभाव वाले, नीच स्वभाव वाले हैं कि उनकी आज्ञा का, उनके उपदेश का, उनके नाम का कोई महत्व हृदय में नहीं। हमारा तन, हमारा मन, बस हम जो चाहे कर सकते हैं। नहीं भाई, अगर तुम गुरुदेव के शासन में नहीं रहोगे तो काल तुम पे शासन करेगा, कर्म तुम पे शासन करेगा, फिर नष्ट हो जाओगे। अभी तुम कवच में हो तो सुरक्षित हो। याद कर लेना, पूरे जीवन में इसका अनुभव कर लेना, जहां कहीं गुरु आज्ञा का उल्लंघन करोगे वहीं फंस जाओगे, नष्ट हो जाओगे। अगर कृपा ना बचाए तो जीवन भर तुम दंड उसका भोगोगे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे, सदगुरुदेव भगवान कृपा करके तुम्हारे मन को निर्मल करते हैं। मन निर्मल करने में बड़ा श्रम लगता है, जैसे कपड़े में कोई दाग लगा हो तो धोने वाले को बड़ा श्रम लगता है, बार बार वहां रीठा लगा के मलना, धोना, पीट पीट के उस दोष को निकालना। ऐसे ही परम कृपालु गुरुदेव करते हैं हमको, शासन में लेकर डांट कर धुलार कर, ये हरि नहीं करते, ये हरि का कृपा रूप गुरुदेव करते हैं।
सच्ची सच्ची। गुरुदेव की कृपा ना हो तो परमार्थ का मार्ग ही ढका रहता है, मिलता ही नहीं है। चाहे जितना ज्ञान विज्ञान बगारो, वो अंतर आत्मा में मार्ग प्रकाशित नहीं होता है। ये तो गुरु कृपा ही केवलम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शरणागति का मतलब होता है कुम्हार की मिट्टी, सीधी भाषा में समझ लीजिए। आप कुम्हार की मिट्टी हैं, अब उस मिट्टी के साथ वो कुम्हार कैसा बर्ताव करता है सबको पता है। पहले एक मजबूत डंडा लेकर उसे कूटता है, कहीं भी इतना भी, अगर वो जरा सा सरसों जैसा भी कण रह गया तो वहीं से पात्र फूट जाएगा, वो रस लेने लायक नहीं रहेगा, उसमें रस नहीं रखा जा सकता। एकदम महीन, फिर पानी डाल के पैरों से गूंधता है, फिर हाथ में लेकर उसे बार बार गूंध के और मुलायम करता है, फिर चाक पे चढ़ाता है, जैसा चाहता है वैसा आकार दे देता है। यह है शरणागति। थोड़ा भी अहंकार रह गया तो वहीं से भागवतिक रस बह जाएगा। और यहां थोड़ा सा क्या, पूरा चलनी है, चलनी में गैया दू है और दोष दयु को दे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे, उज्जवल कर दे धोए। धोने दो चुपचाप, हल्ला मत मचाओ, सारे दाग धुल जाएंगे शांति से। जैसी आज्ञा शास्त्र करता है गुरुदेव, शास्त्र को तुम क्या समझोगे? तुम्हारी भाषा में गुरुदेव तुम्हें बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा तो दैवी भाषा शास्त्र को तुम समझ जाओगे? नहीं समझोगे। जो गुरु के वचनों पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देता है उसके जीवन में प्रश्न ही प्रश्न रहते हैं, समाधान करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती है। मान लीजिए बहुत बढ़िया अवसर है, होली खेल लीजिए, होली अब रंग बरसे, रंग कब बरसता है? होली, हम प्रियालाल के होली कहते हैं, प्रियालाल के होली, अपने अहंकार के, अपने देह के, देह संबंधों के, भोगों के, अभी प्रियालाल के कहां हो? तो का रंग बरस रहा है? काम क्रोध का, ईर्ष्या द्वेष का, मान अपमान का। अगर श्यामा श्याम की होली तो फिर नयो नेह नवरंग नयो रस, ये बरसेगा। आए तो इसी में भींजने के लिए हो वृंदावन, प्यारी जू के आए सा प्रेम रंग, फिर आप दूसरा रंग न चढ़े। बोले जेव ही गुरुदेव मन को निर्मल किए, तब तह धरे श्याम चरणाम्बु छुवत न मैलो होए। आहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। महाराज तुम मांग कर रहे हैं, महाराज मांग कर रहे हैं, मुझे निर्मल मन पसंद है, मुझे छल कपट पसंद नहीं। गुरुदेव मांग नहीं कर रहे हैं। देखो गुरुदेव की हरि से भी बढ़कर उदारता, हरि तो कह रहे हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और गुरुदेव किसको ले रहे? जो कपटी है, छली है, दोषों से युक्त है, उसे गले में लगा करके हरि के लायक बना रहे। कैसे? बोले मन मैल मिटावे, उज्जवल कर दे धोए। जो हरि को चाहिए वो गुरुदेव रूप से कर रहे। इसीलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तो गोविंद ने ही बता दिया बलिहारी गुरु आपने, बलिहार करो अपने गुरुदेव की, जिन्होंने मेरे से मिला दिया। नहीं, मेरे से मिलना साधारण बात नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए निर्मल मन और मन है तुम्हारा मलिन, कैसे पा सकते थे? गुरुदेव ने मन के मैल को छुड़ा दिया। अब मैल छुड़ाने में श्रम लगता है, उस कपड़े को बार बार रगड़ा जाता है, पीटा जाता है, वो तब निर्मल होता है। ऐसे पिटाई होगी आपकी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, एक दाग थोड़ी है, बहुत दाग है। पिटाई का तात्पर्य है वचनों का आपके ऊपर शासन, वचन का शासन। वचन आधीन सदा रहें, रूप समुद्र अगाध, प्राण रवन सो कत करत, बिनु आगस अपराध।
लालजू महाराज हमारी महारानी जू के कैसे अधीन है, वचन अधीन सदा रहे। लाडली जू का शब्द और अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का सिर झुकाकर स्वीकार करना, यह है प्रेम संबंध। वचन अधीन सदा रहे। त्रिभुवन के जितने भी बड़े बड़े महात्मा ऋषि सब हुए हैं, इन्हीं लालजू महाराज के चरणों की रज से हुए हैं, इन्हीं चरणों का आश्रय लिया है। हमारे लालजू महाराज हमारी प्यारी जू के कैसे, इसीलिए हम रस चर्चा करने में घबराते हैं कि मलिन बुद्धि जब नाम नहीं जप पा रहे, सिद्धांत से नहीं चल पा रहे, तो प्यारी जू की लीलाओं में तुम्हारी क्या बुद्धि होगी। पहले सिद्धांत पुष्ट कर लो, पहले देह भाव से मुक्त हो तो रस भाव में तुम्हारा प्रवेश हो। प्यारी जू की रसमय लीला में बड़ा दुर्लभ विषय है। ये वृंदावन धाम है, प्रिया प्रीतम का महल है, यहाँ की कृपा से पहले हृदय की मलिनता नष्ट हो, स्त्री पुरुष भाव नष्ट हो, भोग भावना नष्ट हो, तब जाके कहीं हम ऐसी अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचे जहां प्यारी जू हमें प्राण प्यारी लगने लगे। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी, तब तो ये रस समझ में आवे। गुरुदेव ने मन को निर्मल किया तो निर्मल मन की मांग करने वाले श्री श्याम सुंदर उसके हृदय में पधारे। खत्म खेल, अब कोई मैल छू नहीं सकता क्योंकि स्वयं प्रभु हृदय में विराजमान हो गए। तभी श्रीमद राधा सुधा निधि में महाप्रभु कह रहे, कर्माण श्रुति बोधिता नितराम कुरवंत कुरवंत मा गूढ़ाश्चर्य रसाश्रगादि विषयान ग्रहणंत मुंचंतु वा। वो महापुरुष शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे, वो विषयों को ग्रहण करे या त्याग दे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब अंदर श्री लाल प्रिया विराजमान हो गया, अब कोई मल नहीं छू सकता। पर हमारा चश्मा तो मल वाला लगा है, तो हम वहां भी मल का ही दर्शन करते हैं। ये रस जान दूध सिंघिनी को कनक पात्र ठहरावे, कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये सिंघिनी का दूध है वृंदावन का प्रेम रस, ये स्वर्ण पात्र में टिकता है। गुरुदेव के बच्चा बन जाओगे तो वो तुम्हें स्वर्ण पात्र बना देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये जो नाना प्रकार की गर्म हवाएं चल रही है, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष राग आदि की, गुरुदेव के वचन के अनुसार चलने वाला शिष्य वो आनंद पूर्वक सहन करता है। जैसे एक किसान ऐसे सर्दी के समय में जब आप रजाई छोड़कर निकलना नहीं चाहते, वो बहुत कम वस्त्र धारण करके गेहूं की फसल में पानी लगाता है, पूरा कांपता रहता है ऐसे पूरी रात रात पानी, जो किसान जन है वो जानते हैं। पर उसको शीतलता लगती, पर शीतलता का दुख नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि 2 महीने बाद इसमें 50 मन गेहूं पैदा होगा, हमारा परिवार सुखी पूर्वक 1 वर्ष इसमें भोजन पाएगा। 1 वर्ष जीने के अन्न के लिए वो इतने शीतलता के कष्ट को आनंद पूर्वक सह लेता है। वो अनंत काल तक प्रियालाल के समीप हम सुख पूर्वक रहेंगे, उसके लिए हम काम क्रोध नहीं सह सकते, हम विकार नहीं सह सकते। बोले बहुत कष्ट होता है इनके सहने में, मानते हैं, क्योंकि आप अंतःकरण धर्म से तदात्म्य है, लेकिन आपको जेल हो जाए तो फिर क्या करोगे? आपसे अपराध बन गया, आप जेल भोग रहे, 20 साल की सजा हो गई, अब वहां तुम्हें रखा है क्या सब भोग? जो मिलेगा खाओगे, जैसे आचरण कराए जाएंगे वैसे वहां करोगे, थोड़ा भी बोले तो 4-5 मिलके तुम्हें पीट देंगे। अब उस समय मन को ना वो योगी है ना तपस्वी है, लेकिन सहता है ना, मन को समझा के पूरा जीवन काटता है ना जेल में। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अनंत जन्मों के अपराधों से मुक्त करने के लिए हमें अवसर मिल गया, मन को समझा लो भाई, अब ये जन्म हमने श्यामा श्याम को दिया, तुम चाहे जितना उलरो, चाहे जितना संकल्प विकल्प करो, अब हम तुम्हें भोगों में नहीं फंसने देंगे।
कुंदन बने ताप जग सही सही, ये शब्द ही याद नहीं कर रहे आप। सहत सहत बाढ़े भगत, ये शब्द ही नहीं है अपने लोगों के हृदय में। लाडली जू के लिए किसने प्राण समर्पित किए हैं? हम अपने मन को समर्पित हैं, भोगों को समर्पित हैं, अनुकूलता को समर्पित हैं, सम्मान को समर्पित है, लेकिन प्यारी जू प्यारे जू को कौन समर्पित है? बड़ा गूढ़ विषय, इसीलिए तुम्हारी वृत्ति तुम्हें धोखा दे रही है। नहीं नहीं सावधान हो जाओ। तात मात

जैसा आप करो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे शांत, अंदर आग लगी बाहर से शांत बैठा है, वो देख रहे हैं प्यारे मेरे लिए ये सहरा है। अब क्या हुआ, बोले रूप माधुरी ध्यान समावे गुण गावे गोविंदा, हृदय में ऐसी भक्ति की बाढ़ आई, सब जलन मिट गई है, अनंत जन्मों की जलन मिट गई, आनंद मगल हो गया, भगवान का यश गान कर रहा है, सामने रूप माधुरी विराजमान है, प्रिया प्रीतम संग है, अब हो लिया तो आनंद ही आनंद, आनंद के मार्ग में हमारा प्रवेश हो गया है। अब चूकिए मत, मां मुनिस्मर बार बार भगवत स्मरण करें। अपने लोगों को जो प्राप्त हुआ है बहुत दुर्लभ है, कह रहे कि जितने भी तीर्थ हैं भारत में विश्व में कहीं भी, सब तीर्थों का अवगाहन करे एक आदमी, और एक वृंदावन की रज को ऐसे लेके ऐसे रख ले तो इसके करोड़वें अंश के बराबर कोई तीर्थ नहीं है। ये कहानी नहीं कि ऐसे कही गई हो, क्यों, क्योंकि जिनके चरणों को पूरा विश्व नमन करता है वो लालजू महाराज, जिन गोरे चरणों को अपने हृदय रूपी संपुट में छुपा के रखते उन चरण चिन्हों से चिन्हित ये भूमि है। तज तीरथ हरिराधिका तन दुति करी अनुराग, जिहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। यहां वृंदावन में एक कदम चले तीर्थराज प्रयाग के वास और अवगाहन का फल आपको मिल रहा है, कैसे अपार महिमा। देखो जैसे दूध पीने से संध्या शक्ति तुरंत बल आता है, तो उस बल का प्रयोग आप कहां कर रहे हैं, खास बातें हुई, आप दूध पी के कर क्या रहे हैं, उस बल का प्रयोग किधर कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं या सार्थक कर रहे हैं। यहां का बहुत एक एक कण अपार शक्ति से संपन्न है, हम इसका प्रयोग कहां कर रहे हैं, हमारे रहनी पर इसका बहुत बड़ा फल टिका हुआ है, हमारी रहनी गलत हो रही है, हमारा जो महापुरुषों के द्वारा वृंदावन सेवन करने का भाव रहा है उससे बिलग हो रहा है, इसीलिए ये प्रभाव जो वर्णन किया जा रहा है हमारी समझ में नहीं आ रहा है, भला ऐसा कैसे प्रभाव हो सकता है। एक एक पग पर यहां प्रयाग, प्रयागराज को पावन करने की सामर्थ्य किसी और तीर्थों में नहीं, क्योंकि सब तीर्थ प्रयागराज में अपने को पावन करते हैं जब वो कुंभ पड़ता है। प्रयागराज यहां की परिक्रमा करके एक बार रज में लौटते हैं और फिर इतनी सामर्थ्य आ जाती कि 12 वर्ष तक सब तीर्थों को पावन करते रहते हैं। फिर यहां पग पग पर प्रयाग है, जेहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। गुरु ने बतायो राधा मोहन हूं गायो सदा, सुखद सुहायो वृंदावन गाढ़े गहिरे। सदगुरुदेव ने बताया और स्वयं प्रिया प्रीतम ने अपने श्री मुख से जिस महल का जस गाया, ये वृंदावन धाम है, इसे बहुत गाढ़े से पकड़ लो। गाढ़े से पकड़ने कुछ भी हो जाए वृंदावन के सिवा हमारे जीवन में, किसी भी तीर्थ या किसी भी पुरी या किसी भी धाम का कोई आश्रय नहीं रहेगा, केवल वृंदावन। आप गृहस्थ हैं बाहर जाइए वृंदावन भाग के आइए, जैसे छुट्टी होने पर अपने घर जाते हैं ऐसे आप ड्यूटी के लिए बाहर जा रहे हैं, आपका घर श्री धाम वृंदावन है, ऐसे आश्रय से पकड़ो या इस सीमा के बाहर प्राण भले निकल जाएं जीवित नहीं जाएंगे, या ऐसा नियम दोनों भाव आपको श्री जी से मिला देंगे। बड़े भाग्य हैं जो वृंदावन वास कर रहे हैं। कह रहे अद्भुत अद्भुत महिमंडन परे ते परे, जीवन को लाहु हाहा क्यों न ताहि लहुरे। बड़ा अद्भुत वृंदावन, बड़ा अद्भुत वृंदावन, ये ब्रह्मा की सृष्टि से परे है, भगवान शेष जी के फण में विराजमान ब्रह्मांडों में नहीं,
ये भगवान की

0: चिदानंदमय सृष्टि है यहां, हमारे नेत्र चूंकि पार्थिव है इसलिए हम नहीं देख पा रहे, पर महापुरुष जन कहते हैं अगर जीवन का लाभ लेना है तो वृंदावन धाम को हा हा हा हा कह के तात्पर्य कि हाय इतना बढ़िया अवसर है और आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, थोड़े से सुख के लिए थोड़े से जीवन में हम कैसे फंसते चले जा रहे हैं। ये मुक्त होने का अवसर है, फंसने का नहीं, कैसे समझाएं। बस जैसे आंखों का अंधा उसे कहा जा रहा है आगे कुआं है मत गिर जाके, उसको लगता है हमें बहला रहे हैं, हमारा अभ्यास हम निकल जाएंगे, हमारी ऐसी कुछ दशा है। शास्त्र गुरुजन कहते हैं आगे गड्ढा है गिर जाएगा तू, ओ तुम क्या जानो, हम बहुत बार पार हुए हैं अब भी पार हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम जिसे देख नहीं पा रहे उसे संबोधन करके तुम्हें बचाना चाहते हैं। बोले आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही सरस सुदेश पपीहापन बहुरे। वृंदावन का रंग कौन खेल पाएगा, जो पपीहापन में होगा, चातक का प्रण। जैसे चातक पी पी कह के पुकारता रहता है और अपने मेघ प्रीतम को देखता रहता है, मेघ प्रीतम गड़गड़ाहट से ओले बरसा के उसे पीड़ा पहुंचाता है। दूसरे पक्षी कहते ले इसका फल, बहुत पी पी कर रहे थे, देखो ना डांट रहा है मेघ और ओले बरसा रहा है तुम पर, तो कहता है ये तुम्हें लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा प्रीतम आनंदित हो रहा है। जैसे कोई अपने प्यारे के ऊपर फूलों का श्रृंगार करे, ऐसे मुझे ओले लग रहे कि मेरे मेघ के द्वारा बरसाए हुए ओले मुझे पुष्प की तरह सुखद लग रहे। पपीहा पन गहुरे, हमारे प्रीतम के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, बड़े बड़े दैवी शक्तियों के द्वारा दी गई अनुकूलता से भी बहुत भारी है, सुखद है। ध्यान देनी आप, बने तो रघुबरते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी औरनते बने तावन। हमारी प्यारी जू के द्वारा किया हुआ विधान हमारे लिए सर्वोपरि है, भारी से भारी प्रतिकूल परिस्थिति भी हमें महासुखद लगनी चाहिए क्योंकि मेरी प्यारी जू का विधान। बोले इसमें प्यारी जू क्या करेंगे, वो हमें गाली दे रहा था, तो आप शरणागत नहीं है क्या, है तो फिर आपकी तरफ उंगुली कैसे उठ सकती है, आपकी तरफ आंख कोई कैसे दिखा सकता है। ये हमारी प्यारी जी से पास हुआ है कि तुम्हें गाली दी जाए, जिसे अब पता चले कि तुम्हारा अहंकार कितना है। बिल्कुल आप विधान में हैं, बिना विधान के आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। और आपसे सत्य कहते हैं, जीवन भर के अनुभव को कहते हैं, जहां कहीं जले तो गलती हमारी हुई प्रिया प्रीतम की नहीं, पूरे जीवन का अनुभव खुली बात कहते हैं। कभी हमें जलन हुई, कभी असंतोष हुआ है, कभी हमें विषाद आया है, तो उसमें मेरी सोच की गलती हुई है प्रिया प्रीतम की तरफ से, कभी नहीं, कहीं नहीं। अक्षर अक्षर का चिंतन, क्योंकि अपने लोग कोई बाहर के क्रियाओं का चिंतन नहीं, आंतरिक चिंतन होता है। हमसे चूक हुई तो हमें जलन होगी, हमसे चूक हुई तो हमें विषाद होगा। नहीं, आज तक कभी विषाद, भले कोई गाली दे, भले कोई मारे, भले भूखे रहे, विषाद नहीं हुआ। विषाद तब हुआ है जब हमारी चूक हो गई है, हमारा चिंतन बिगड़ गया है, हम वस्तु चिंतन की जगह व्यक्ति चिंतन किया, तभी हम जले, तभी हम परेशान हुए हैं। पपीहा का प्रण लेने वाला वृंदावन के रंग में खेलता है, अपने प्यारे के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, यदि प्रतिकूलता नजर आती तो प्रेम कैसा आपका, यही तो खास बात है। हम श्री जी के हमारे माई श्यामा जी को राज बोल दिए, अंतर में देखो ये बात गई क्या, हमारे माई श्यामा जी को राज। एक बार मजनू लैला के दीवाने, सब कोई जानता है लैला राज घराने से थी, उसने संपूर्ण नगर में गुप्त रूप से जितनी भी दुकानें थे सब पे कह दिया था, अगर मजनू कुछ भी खाना चाहे उससे पैसे न मांगे जाए, उसकी इच्छा के अनुसार उसको भोजन दिया जाए, क्योंकि मेरे प्रेम में बावला है। जिससे मांगे, जब लोगों ने देखा ना पैसे मांगे जाते थे ना तो कोई प्रश्न होता है, जो चाहे अंगुली ऐसे करे वो वस्तु से दे दी जाती। लाखों मजनू हो गए, रबड़ी पीने वाले, जलेबी हलवा पाने वाले, तो लाखों मजनू तैयार हो गए, हा ले ला जलेबी। अब जितनी दुकान वाले हैं सब वहां हिसाब, तो उन्होंने कहा कि इतना एक मजनू कैसे खा सके, बोले है ही नहीं एक मजनू, लाखों मजनू तैयार हो गए, हम किसको जाने कौन असली मजनू। तो उनका मजनू तो एक ही होता है, ये रबड़ी खाने वाले मजनू थोड़े थे, कह दो। अब जब दुकान में कोई भी सामान लेने आए तो सबसे कह देना कल शाम के लेला अपने मजनू से मिलना चाहती है। लाखों जितने मजनू बने थे, हा लेला सब, कोई देख नहीं पाता था उनको, पर्दा करके सामने आई और कहा मैं अपने मजनू के दिल का खून लेना चाहती हूं, कटोरा और छुरी सा। रबड़ी पीने वाले मजनू के पैर पीछे होने लगे, जो असली मजनू। उसने कहा आज मेरा प्यार सार्थक हुआ, मेरे प्यार की आज वृत्ति सार्थक हुई, क्योंकि आज कुछ देने का अवसर आया है। चाकू पकड़ी जेबी से, बोले बस ये रबड़ी खाने वाले मजनुओं को जेल में डालो, ये है हमारा मजनू, समझ रहे हो, हम रबड़ी खाने वाले मजनुओं की लाइन में आए, खून देने वाले मजनू नहीं है, देख लो अंदर से देख लो। चातक को पन गहिरे, चातक उड़ता जा रहा था, कुछ पक्षी प्रेरण में बैठे थे, कहा आओ थोड़ा विश्राम कर लो, बोले नहीं ये मेघ के जल से सींचा हुआ वृक्ष नहीं है, इसको नीचे के जल से सींचा गया, हम केवल उसी वृक्ष में बैठते जो केवल मेघ से सींचा जाता है। चातक उड़ता हुआ जा रहा था, बधिक ने निशाना लगाया, बाण मारा, गंगा जी में गिर गया, ऐसे चोच कर ली, मानो किसी पक्षी ने पूछा आप तो मरने जा रहा है, भागीरथी का एक बूंद मुख में चला जाए तो कल्याण हो जाता है, चोच के ऊपर उठाए, बोले मेरा नाम चातक है, मैं पीता हूं तो सिर्फ अपने प्रीतम मेघ के द्वारा दिया हुआ स्वाति का बूंद, नहीं तो मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी गंगा का एक बूंद अपनी चोच पे नहीं आने दूंगा, यह है चातक प्रण।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
5: यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ।

हे परम पूज्य बृहस्पति देव, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमें ज्ञान प्रदान करके हमारा कल्याण करें। बीज मंत्र।

हे विद्यापति बृहस्पति देव, हम आपके बीज मंत्र का जाप करते हैं। हमें ज्ञान प्रदान करें, हमारा कल्याण करें, हमारी रक्षा करें।

0: When you face failures, don't change your goal, change your strategy. You are listening the thoughts of Mr. Vivek Bindra, who is a motivational speaker and a corporate trainer.
1: आप सबका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। आज बात करूंगा माइंड कंट्रोल और इमोशन कंट्रोल की। काफी लोग बात करते हैं मूड की, कॉन्फिडेंस की, माइंड की, इमोशन की, उसको कैसे बिल्ड किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। ये वीडियो भगवद गीता के पे आधारित एक शक्तिशाली टूल और फ्रेमवर्क के साथ उसको लेने के लिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। कृष्ण कंफर्म करते हैं माइंड कंट्रोल के विषय में बहुत कुछ गीता के अंदर। पहला मैं श्लोक लेता हूं, विषयाविनी वर्तन ते निराहारस्य देहि नाम रस वर्जम रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तते। कृष्ण क्या कहते हैं, यू कैन नॉट डिस्कार्ड द लोअर इमोशन अनलेस यू डेवलप अ हायर इमोशन। यू कैन नॉट डिस्कार्ड द लोअर कॉन्शियसनेस अनलेस यू डेवलप अ हायर कॉन्शियसनेस, राइट? सो डेवलप अ हायर कॉन्शियसनेस टू डिस्कार्ड द लोअर वन। एक बार और, पीछे मैंने एक सेक्स अटैचमेंट वाले वीडियो में सिमिलर श्लोक पर चर्चा किया था, डेवलप अ हायर कॉन्शियसनेस टू डिस्कार्ड द लोअर वन। सबसे पहला रूल क्या है, ना तो आप माइंड कंट्रोल कर सकते हो कभी भी, ना ही आप इमोशन कंट्रोल कर सकते हो कभी भी, ना ही आप मूड कंट्रोल कर सकते हो कभी भी। तो आप कर क्या सकते हो, आप इनको रिप्लेस कर सकते हो। कम ऑन, क्या कर सकते हो, रिप्लेस। जैव धर्म में ठाकुर भक्ति विनोद ने 5 प्रकार की चेतनाओं के विषय में चर्चा की थी, आच्छादित, संकुचित, मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित। ये 5 प्रकार की चेतनाएं होती हैं। पूर्ण विकसित इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। आप किस कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं उसको क्या धीरे धीरे अपलिफ्ट कर सकते हैं। यू कैन नॉट रिजॉल्व अ प्रॉब्लम एट अ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विच हैज क्रिएटेड इट। एक बार और, कम ऑन, आप उस समस्या को सॉल्व ही नहीं कर सकते जिस चेतना में उस समस्या को उत्पन्न किया गया था। अगर आप लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, आच्छादित, संकुचित के लेवल पे फंसे हुए हैं और यहां आप समस्या महसूस कर रहे हैं, तो इस समस्या को जिस चेतना ने इस समस्या को प्रोड्यूस किया, उसी चेतना में रहकर आप इस समस्या को रिजॉल्व नहीं कर सकते। पहला रूल क्या है, अपनी चेतना को उठाना पड़ेगा। कम ऑन, क्या करना पड़ेगा, रेज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, डेवलप अ हायर कॉन्शियसनेस टू डिस्कार्ड द लोअर वन। परम दृष्टा निवर्तते, नहीं तो तकलीफ रहेगा। अब कृष्ण से छठे अध्याय के 34वें श्लोक के आसपास चर्चा हुई कृष्ण और अर्जुन की, कि माइंड कंट्रोल करें कैसे। अर्जुन क्या कहते हैं, मुझसे तो माइंड कंट्रोल होता ही नहीं भगवान। तो छठे अध्याय में कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो हो मन दुर्निग्रहम चलम अभ्यासे न तु कौन्तेया वैराग्य न च गृहते। कम ऑन, अभ्यास वैराग्य, अभ्यास न तु कौन्तेया वैराग्य न च गृहते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही होगा, नहीं तो असंशयम महाबाहो, हे महान बलशाली भुजाओं वाले अर्जुन, आपसे भी मन्ना दुर्निग्रहम चलम, माइंड कंट्रोल नहीं होने वाला। तो बोला फिर करना क्या है, अगर मैं भी नहीं कर सकता तो करना क्या है। तो कृष्ण ने क्या कहा, कुछ अभ्यास और कुछ वैराग्य। आप जानना चाहते हैं क्या अभ्यास क्या वैराग्य। अभ्यास बिल्ड करना है ऊंची चेतना में आने के लिए, वैराग्य क्रिएट करना है इस चेतना में रोकने के लिए जो सोर्सेज हैं उनसे वैराग्य क्रिएट करना। अब ये करेंगे कैसे, देखिए ध्यान दीजिए। आपका माइंड बैंक एक स्टोर हाउस की तरह काम करता है। उस स्टोर हाउस में बहुत प्रकार के पुरानी एक्सपीरियंस और पुरानी लेवल की कॉन्शियसनेस के द्वारा इमोशंस ऑलरेडी है, कुछ छुपे हुए, दबे हुए, कुछ उठे हुए, कुछ निकले हुए, अलग अलग प्रकार के उस डेटा बैंक के अंदर इमोशंस है। देर आर 36 टाइप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन, जिसमें से पहले 12 नेगेटिव इमोशन, बीच के 12 थोड़े न्यूट्रल इमोशन और अगले 12 बड़े स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्रोडक्टिव इमोशन। आपके पास मेमोरीज है आपके स्टोर हाउस के अंदर, माइंड में मेमोरीज है। उन मेमोरी में एक्सेस करिए पहले किसी इंसिडेंट को जो प्रोडक्टिव इमोशन से जुड़ा हुआ इंसिडेंट था। अब मैं फ्रेमवर्क दूंगा, अभी पूरा समझ में नहीं आएगा आपको जब तक पूरा वीडियो नहीं देखते। पूरा वीडियो देखिए, रुके अभी साथ में, मेरे साथ ही रहिए। अभी आप एक फ्रेमवर्क देने वाला हूं, प्रोडक्टिव इमोशन की मेमोरी को वापस रिवाइव करना है। याद करिए वो दिन जो आपकी लाइफ का हाईएस्ट अचीवमेंट का दिन था। याद करिए कोई ऐसा दिन जिस दिन आप बहुत प्रोडक्टिव, बहुत सक्सेसफुल और बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस किए थे। याद करिए कोई ऐसा दिन जिस दिन आपने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट को हासिल किया था। उस दिन आपके आसपास क्या हो रहा था, उस मेमोरी बैंक से उसको ढूंढ के निकालिए, ढूंढिए उस मोस्ट प्रोडक्टिव जो एक्सपीरियंस था आपके जीवन का, जो बहुत उस दिन आप बहुत खुश थे, आपने उस दिन बहुत कुछ अचीव किया था अपनी लाइफ में, आपकी लोग बहुत तारीफ कर रहे थे। याद करिए, अब तीन चीजें, मैं तीन प्रश्न दे रहा हूं। सी वॉट यू सॉ, फील वॉट यू फेल्ट, हियर वॉट यू हर्ड। देखिए, सी वॉट यू सॉ, पहला चीज, उस दिन आपके आसपास कौन था उस सबको देखिए। दूसरा, हियर वॉट यू हर्ड, लोग आपके बारे में उस दिन क्या बात कर रहे थे उसको याद करिए। उसके बाद फील वॉट यू फेल्ट, उस समय आपके मन में क्या इमोशंस थे, आप कैसा सांस ले रहे थे, आप कैसा एक्सपीरियंस कर रहे थे, आपके कंधे कैसे थे, आपका चेहरा कैसा था, आप कैसा फील कर रहे थे उस दिन। उन इन तीन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढिए, यानी कि दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, वो इंसिडेंट जो मोस्ट प्रोडक्टिव इंसिडेंट था आपकी लाइफ का, उसको ढूंढ के लाइए, अपने मेमोरी बैंक से निकाल के लाइए। दूसरा, तीन प्रश्न लीजिए अपने आप से, करिए सी व्हाट यू सॉ, देखिए उस दिन क्या हो रहा था आपके आसपास, कौन कौन था। हियर व्हाट यू हर्ड, लोग आपसे क्या बात कर रहे थे आपके साथ में। फील व्हाट यू फेल्ट, आपका फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी कैसा था उस समय, उसको वापस रिवाइव करके लाइए। ये तीन प्रश्नों का जब उत्तर मिलेगा तो वो न्यूरो पाथवे खुल जाएंगे आपके। क्या खुल जाएंगे? न्यूरो पाथवे खुल जाएंगे। अब आपके मेमोरी बैंक से वो वापस आकर के आपके कॉन्शियसनेस में बड़ा होने लग जाएगा। उस समय की जो कॉन्शियसनेस थी, वो कॉन्शियसनेस तुरंत वापस आ जाएगी। और वो कॉन्शियसनेस आते ही आप अपने माइंड को, अपने मूड को, अपने इमोशन को डेवलप कर जाएंगे, उस एलिवेटेड कॉन्शियसनेस पे फिर से वापस आ जाएंगे। और उस एलिवेटेड कॉन्शियसनेस से, उस मोस्ट प्रोडक्टिव कॉन्शियसनेस, मोस्ट प्रोडक्टिव मेमोरी जिसको आप ट्यून इन कर गए, एफएम चैनल एक समय में एक शहर में 7-8 एफएम चैनल चल रहे होते हैं, आप ट्यून इन करते हैं और बेस्ट एफएम चैनल को चूज करने का अधिकार है आपके पास। एक समय में 700 टीवी चैनल्स हैं आपके टेलीविजन पे, किस चैनल को आप ट्यून इन करना चाहते हैं और किस चैनल को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसका पूरा अधिकार है आपके पास। देयर इज अ रेंज ऑफ इमोशंस इन योर लाइफ। कपड़े खरीदने जाते हैं आप किसी शोरूम के अंदर, देयर इज अ रेंज ऑफ क्लोथ्स इन द शोरूम। अभी जो पहला कपड़ा मिला, ऐसा नहीं कि आप वही लेकर के पहन लेते हैं, आप चूज करते हैं जो आपको सबसे ज्यादा सूट करता है, जो आपके लिए ठीक है, जो आपके लिए अच्छा है। ठीक उसी प्रकार से, डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस, क्रिएट एंड चूज योर एक्सपीरियंस। एक बार और, बड़ी अच्छी बातें बोल देता हूं बीच बीच में मैं, कम ऑन, डू नॉट हैव एक्सपीरियंस, क्रिएट एंड चूज योर एक्सपीरियंस। अपने मेमोरी बैंक में जाइए, निकालिए, ढूंढ के निकालिए, सी व्हाट यू सॉ, उस दिन क्या हो रहा था, लोग आपसे क्या बात कर रहे थे, वो सारी

choose your memory. So your choice of memory will develop, second step, a corresponding consciousness. उस memory में क्या consciousness थी? Second step, corresponding consciousness अभी मिल जाएगा आपको. आपका choice of memory, उससे क्या आएगा आपका? Corresponding consciousness, इसको बोलेंगे, it will determine how do you feel now. How do you feel now? हाँ, तो पहले memory ढूंढिए, उससे आपका consciousness बदलेगा, हायर कॉन्शियसनेस हो जाएगा. और तीसरा उसका रिजल्ट क्या आएगा? हाउ डू यू फील नाउ. इमेजिन करिए अगर आप हर समय मोस्ट प्रोडक्टिव पीक परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी की कॉन्शियसनेस को बरकरार रख पाए तो आपका जिंदगी 10x हो जाएगा. कम ऑन, क्या हो जाएगा? 10x. यू कैन ग्रो 10 times बेटर. इमेजिन करिए अगर हर समय आप उसी कॉन्शियसनेस में रह पाए जो पीक परफॉर्मेंस की कॉन्शियसनेस थी. एक साधक को साधना के लिए उसको सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को वापस लाना चाहिए. एक स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए अपना मोस्ट प्रोडक्टिव पढ़ने वाले दिन की फीलिंग और उसके इमोशन, उसकी साइकोलॉजी, उसकी फिजियोलॉजी को खींच के लाना चाहिए. इसी प्रकार एक बिजनेसमैन को नेगोशिएशन के दौरान, सेल्स के दौरान, परिवार में, रिलेशनशिप में, जिम में, हेल्थ के लिए, हर समय जब भी आप चाहें एक स्पोर्ट्समैन, एक एथलीट अपनी बेस्ट कॉन्शियसनेस को रिवाइव कर सकते हैं. केवल याद रखिए फ्रेमवर्क, सी व्हाट यू सॉ, फील व्हाट यू फेल्ट, हियर व्हाट यू हर्ड. तो उसका अर्थ क्या हुआ? आपको महसूस नहीं करना है, अपने आप को महसूस कराना है. राइट, यू ट्यून इन टू व्हाट यू वांट टू क्रिएट. महसूस जो इमोशन जो आप एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस होता नहीं है, एक्सपीरियंस क्रिएट किया जाता है. आप कर सकते हैं, आपके जो लॉस्ट प्रोडक्टिव न्यूरो पाथवे थे आप उनको रिकॉल के द्वारा वापस ले आएंगे. वो न्यूरो पाथवे जो आपके लिए खो गए थे, छुप गए थे, दब गए थे, आप उनको वापस रिवाइव करके ले आएंगे. उन्हीं प्रोडक्टिव न्यूरो पाथवेज को जनरेट कर देंगे.

0: जिंदगी का सफर।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Yeah.

शानदार सुरह के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि भाई अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए गर्मा गर्म मसाले वाली चाय की पहली सिप लीजिए और एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पर इस शो को, जहाँ पर आपको मिलता है एंटरटेनमेंट का डबल डोज। आपके शहर में आज वेदर और ट्रैफिक की क्या अपडेट है ये भी लेकर आई हूँ, साथ ही सोशल स्यापा से लेकर क्या कुछ खास इस बारे में भी बात करेंगे। तो बस एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पर। ये ट्रैक मिलता है म्यूजिक

0: सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।
2: पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जुन जी आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो भाई अब टाइम हो गया वेदर अपडेट का, और अगर हाईएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए तो आज हाईएस्ट टेम्परेचर जाने वाले 38 डिग्री। इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए तो 27 डिग्री रहने वाले है। विंड स्पीड आपको 14 मिलने वाली है, और अगर ह्यूमिडिटी की बात की जाए तो 40% है। बेसिकली डे रहने वाला है सनी सनी, यानी कि अच्छी खासी धूप निकलने वाली है और गर्मियां आ चुकी है। सो इस बदलते मौसम में अपना ख्याल जरूर रखेगा, साथ ही अपने हाइड्रेशन का भी ख्याल रखेगा। और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: डियर एल्डर्स, नेवर क्लिक ऑन लिंक्स फ्रॉम अननोन सेंडर्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। कभी अपने पासवर्ड्स, बैंक डिटेल्स, OTPs एंड KYCs को मिठाई की तरह ना बांटें। स्टॉप, थिंक एंड वेरीफाई।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर

नहीं। और वाकई भाई जब कलर्स हमारी जिंदगी में होता है ना तो हमारा मूड एकदम से लाइट हो जाता है। हमारी बेरंग जिंदगी में जो रंग भरता है वो कलर्स ही तो है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। आपने ये अक्सर सुना होगा कि अगर ब्लू पसंद करते हो तो इसका मतलब आपको मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आज आपको बता दूं अगर आप ब्लू पसंद करते हो तो भाई काम डाउन, आप पूरी तरह से नॉर्मल हो। बिकॉज सोशल मीडिया पर ना इन दिनों एक क्लेम बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और वो ये है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज या फिर जितने भी साइकोपैथ्स है ना उनका फेवरेट कलर ब्लू होता है। तो भाई साइंस इस बात को क्लियर करते हुए ये समझाते हैं कि साइकोलॉजी स्टडीज के अकॉर्डिंग जब लोग ज्यादा सैड या फिर डिप्रेस्ड होते हैं तो वो अपने करंट मूड के लिए ग्रे या फिर डार्क कलर्स को चूज करना पसंद करते हैं। तो भाई जब बात आती है ना फेवरेट कलर की तो तब देखा गया है कि हेल्दी हो या फिर क्लिनिकल कंडीशन वाला इंसान हर कोई यानी कि मैक्सिमम लोग ना ब्लू कलर पसंद करता है। उसके पीछे का रीजन है, बिकॉज इसके पीछे का रीजन बड़ा ही सिंपल है। ब्लू कलर ब्रेन को काम सिग्नल देता है, ब्लड प्रेशर कम करता है, स्ट्रेस रिड्यूस करता है, प्लस हॉस्पिटल्स थेरेपीज रूम और मेडिसिन स्पेस जितने भी है ना सब इसी रीजन से ब्लू कलर यूज करते हैं। मतलब यहाँ पर बहुत ही क्लियर सा मैसेज है इसके पीछे। अगर आपको ब्लू पसंद है, आपको कोई भी मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, पूरी तरह से ठीक है। हाँ ये बताता है कि ब्लू कलर की पीस लविंग पर्सनालिटी है। ये बताता है कि आप जिंदगी में रिलैक्स रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो भाई यही बोलना चाहती हूँ कि अपनी पसंद पर प्राउड फील करो, बिकॉज हर किसी की कामिंग पर्सनालिटी नहीं होती, आप उन्हीं में से एक है। और किसी भी तरह की ट्रेंड पर भरोसा ना करें, बिकॉज सोशल मीडिया का काम है आपको गुमराह करना। लेकिन डोंट वरी, ट्रैफिक हो या टीआरजे अंजलि इज द की। तो भाई इसी की के साथ, इसी वाइब के साथ फिर से आएंगे लौट कर इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक एंजॉय कीजिए पैसो ट्रैक जो है खास आपके लिए।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

गर्मी आ गई है ये हम सबको पता है, लेकिन हमारे पास एसी है, फ्रिज है, ठंडा पानी है, ठंडी हवा है, सब कुछ है। और हाँ, अच्छे खासे फ्लैट्स भी हैं। लेकिन भाई जो जानवर हैं उनके पास क्या है? उनके पास है आपकी कार की छाया, उनके पास है पेड़ों की छाया। तो इन सबका ख्याल रखना है हमारी जिम्मेदारी। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजी अंशी, आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। ख्याल रखना है हमारी जिम्मेदारी। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजी अंशी, आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि 2 सेकंड का चेक किसी की जान बचा सकता है। आप सभी को पता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, आगे आने वाले दिनों में गर्मी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, वो अक्सर ठंडी जगह ढूंढते हैं, और उनको सबसे अच्छी ठंडी जगह मिलती है पार्क्ड कार। यानी कि आपने देखा होगा जितने भी शेड वाली जगह है वो अक्सर आपको वहां मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी है कि कई बार ना अक्सर जो ड्राइवर्स होते हैं वो बिना चेक किए अपनी गाड़ी चला देते हैं, जिसकी वजह से ये जो इनोसेंट एनिमल है इनको सीरियस इंजरी हो सकती है। तो बस आपने क्या करना है, सिंपल स्टेप्स एंड बिग इम्पैक्ट को ध्यान में रखना है। कभी भी कार स्टार्ट करने से पहले एक बार नीचे जरूर चेक कीजिएगा कि कोई स्ट्रे एनिमल तो नहीं है आपकी कार के नीचे। साथ ही इंजन स्टार्ट करने से पहले हल्का सा हॉर्न दे देना, सो दैट कि अगर कोई है भी तो वो आराम से बाहर निकल आ सके। और साथ ही एक और चीज आपको करनी है, अगर पॉसिबल हो तो कार के पास थोड़ा मूवमेंट क्रिएट करे, सो दैट की छोटी सी अवेयरनेस किसी की लाइफ सेव कर सके। और मैसेज ऑफ द डे बस यही देना चाहूंगी, इंसानियत सिर्फ लोगों के लिए नहीं, हर जीव के लिए होनी चाहिए। इस गर्मी में थोड़ा सा केयर और थोड़ी सी काइंडनेस जरूर दिखाइए, क्योंकि उन्हें सिर्फ थोड़ी सी शेड चाहिए और बस हमसे थोड़ी सी सेंसिटिविटी। इतना ही तो मांगते हैं और इतना तो हम सब बहुत आराम से दे सकते हैं। तो भाई अपने दिन के साथ उनका भी दिन अच्छा बनाइए। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलते हैं म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं, जो जिंदगी को बचाए

0: वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
0: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

शानदार ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। आज मैं अकेले नहीं आई हूँ, आज मैं आपके लिए एक एक्ट ऑफ काइंडनेस लेकर आई हूँ। एक ऐसी स्टोरी जो इन दिनों बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और ये दिखाती है, ये स्टोरी हमें, इंसानियत आज भी जिंदा है। हाँ, बस कभी कभी दिख जाती है और जब दिखती है ना तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। एंड ये हार्ट वार्मिंग स्टोरी आई है उत्तराखंड से। दरअसल एक ग्रुप जब उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग कर रहा था तो उस ग्रुप को एक स्ट्रे डॉग बीच में फंसा हुआ मिला, जहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लो था और सिचुएशन इतनी ज्यादा डेंजरस थी कि कुछ भी हो सकता था। लेकिन वहां से गुजरने वाले जितने भी राफ्टर थे उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने बिना सोचे समझे ये जो स्ट्रे डॉग वहाँ फंसा हुआ था उसे सेफली रेस्क्यू किया एंड वापस एक सेफ जगह तक पहुंचा दिया। एंड जब ये वीडियो सामने आया तो लोगों ने बहुत पसंद किया इस वीडियो, अपने कमेंट्स भी दिए और ये भी कहा ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट, स्मॉल एक्ट बिग इम्पैक्ट, रियल हीरोज बिना कैप के होते हैं। ये इस वीडियो में जो राफ्टर्स थे उन्होंने बता दिया है। और ये स्टोरी अकेले नहीं है, ये स्टोरी अपने आप में एक मैसेज लेकर आई है। एंड मैसेज ये है आज का, काइंडनेस और कम्पैशन हर सिचुएशन में सबसे पावरफुल होता है। फिर चाहे बात की जाए, कभी किसी की हेल्प करने का मौका मिले तो जरूर आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपके एक स्टेप किसी की लाइफ चेंज कर सकता है। तो बस इसी पॉजिटिव स्टोरी के साथ अपने डे की शुरुआत भी एक पॉजिटिव नोट के साथ कीजिएगा, सो दैट की दूसरों की खुशी के साथ ना आपको अपनी खुशियां भी मिल सके। और साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 एफएम। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: सोशल मीडिया पे प्राइवेसी टाइट रखो, अपनी लाइफ में डॉक्यूमेंट्री मत बनाओ, और हाँ लाइफ में ड्रामा कम।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
2: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार,

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो अगर बात की जाए ना स्मार्टफोन्स की, तो हम सबकी नीड है। बेसिकली स्मार्टफोन स्मार्ट है, पर थोड़ी सी केयर और भी स्मार्ट बना सकती है आपको। सो आज यही बताने के लिए मैं आई हूँ कि किस तरह के स्कैम्स हमारी मार्केट में आ गए हैं, किस तरह से हमें इन सभी स्कैम्स से बचना है। अगर बात की जाए एक रिसेंट के इंसिडेंट की, तो मुंबई से एक रिसेंट इंसिडेंट आया जहां पर 78 ओल्ड वुमेन के साथ साइबर फ्रॉड हो गया। एंड ये बहुत ही शॉकिंग केस रहा, बिकॉज जहां हैकर्स ने फोन एक्सेस करके लगभग 25 लाख रुपए की ठगी कर ली। कोई छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत ही बड़े अमाउंट की ठगी हुई है। एंड अक्सर ऐसा ही होता है, आपको पता भी नहीं चलता और एक क्लिक में आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। सो आज सिर्फ स्कैम के इंसिडेंट की बात नहीं करेंगे, सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये स्कैम होता कैसे। सस्पिशियस लिंक्स या ऐप, अगर आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो अपने फोन पर या फिर आप किसी भी लिंक पर क्लिक करते हो, तो बहुत इजी चांस क्रिएट हो जाता है आपका अकाउंट खाली होने का। एंड सेकेंड थिंग, फेक कॉल्स और ओटीपी ट्रिक्स, ये कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो स्कैमर्स हमेशा इस्तेमाल करते हैं और सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। फोन एक्सेस लेकर बैंकिंग डिटेल्स तक पहुंच जाना बहुत ही इजी हो गया है आजकल स्कैमर्स के लिए। सो अपनी पर्सनल डिटेल्स इतनी पर्सनल रखे कि कोई और उसका एक्सेस ही ना कर पाए। और अगर बात करें स्कैम की, तो बचना कैसे आखिर स्कैम से। सबसे पहले जो भी अननोन लिंक्स आपको मिलते हैं, कभी भी उस पर क्लिक ना करें। सेकेंड थिंग, ओटीपी पिन या फिर बैंकिंग

इन्फॉर्मेशन कभी शेयर ना करें। इसके साथ ही हमेशा अपने फोन में स्क्रीन लॉक और सिक्योरिटी अपडेट जरूर रखें। अपने फोन में हमेशा ट्रस्टेड एप्स ही इंस्टॉल करें, कभी भी थर्ड पार्टी ऐप पर पूरी तरह से बिलीव ना करें। सो इसके साथ आज एक स्पेशल रिमाइंडर भी लेकर आई हूं। जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन है उन्हें स्पेशली साइबर अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर ये स्कैमर्स उन्हें इजी टारगेट बनाते हैं। सो बस यही कहना चाहते हैं कि अपने फैमिली मेंबर्स को थोड़ा सा सपोर्ट और थोड़ी सी अवेयरनेस जरूर दें। सो माय डियर लिसनर्स, ऑनलाइन दुनिया में ट्रस्ट से पहले वेरिफिकेशन जरूरी है। अलर्ट रहिए, सेफ रहिए, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, हेलो, सुनो।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: सोशल मीडिया पे प्राइवेसी टाइट रखो, अपनी लाइफ में डॉक्यूमेंट्री मत बनाओ, और हाँ, लाइफ में ड्रामा कम फोकस ज्यादा रखो।
3: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
4: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
3: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
5: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
0: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
6: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जितना हम इस टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं ना, एक दिन ये हमें अपने पीछे भगाएगी। क्योंकि भाई अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी स्मार्ट हो रही है, इसलिए हमें भी एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की जरूरत है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जिंची आपके साथ, और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ पर आज मैं कैसे शॉकिंग इंसिडेंट लेकर आई हूँ जो हुआ है AI के थ्रू। सो एक शॉकिंग साइबर फ्रॉड केस सामने आया है, जो AI डीप फेक वीडियो का यूज करके एक बिजनेसमैन के आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर को चेंज कर दिया गया। और इतना ही नहीं, इसके बाद फ्रॉडस्टर ने न्यू बैंक अकाउंट खोलकर लोन भी ले लिया। तो देखा कितना बड़ा फ्रॉड हो सकता है, वो भी एक AI से बनाई डीप फेक वीडियो की वजह से। सो अगर इस स्कैम की बात की जाए ना, तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं आखिर स्कैम हुआ क्या। सबसे पहले AI जनरेटेड फेक वीडियो बनाया गया, और इतना ही नहीं आधार डिटेल्स को चेंज कर दिया गया, मोबाइल नंबर चेंज हुआ, फ्रॉड लोन अप्रूव कर लिया गया, और बस हो गया सबसे बड़ा स्कैम। अगर इस स्कैम की बात की जाए ना, तो यहाँ एक चीज बहुत कॉमन है, वो है डीप फेक वीडियो। तो ये डीप फेक वीडियो आखिर होता क्या है? सबसे पहले डीप फेक एक AI टेक्नोलॉजी है, जिसमें आप किसी का भी फेक वीडियो या फिर आवाज क्रिएट कर सकते हो बहुत आसानी से। सो अब आपको करना क्या है, अब आपको स्कैम से बचकर रहने की जरूरत है। सबसे पहले आपको अपना आधार और बैंक अलर्ट रेगुलरली चेक करने हैं, और इतना ही नहीं अननोन वेरिफिकेशन कॉल को हमेशा अवॉइड करना है, अपनी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन शेयर कभी नहीं करने हैं, एंड साथ ही सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे तो इमीडिएटली रिपोर्ट करें। ये तो हम सबको पता है कि AI कितना पावरफुल है, इसलिए अवेयरनेस उससे भी ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए। सो माय डियर लिसनर्स, डिजिटल दुनिया में स्मार्ट रहना ही सेफ्टी है। सो अलर्ट रहे, सेफ रहे, साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: क्या ही सही, थोड़ा सा इश्क।
1: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।
2: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
3: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
2: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
4: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
5: चल अर्जुन, शुरू हो जा।
6: हाँ तो अर्ज किया है?
5: अर्ज
6: अभी करते हैं, सुनो।
5: इरशाद,
6: कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
5: वाह वाह वाह वाह,
6: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
5: तुम अभी इसी लायक?
6: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
7: अच्छा, बस मेरी शायरी सुन लो।
5: फिर
6: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
5: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
6: हेलो।

0: आए शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाए और अपनों की हंसी को बचाए। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना।
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: सोशल मीडिया पे प्राइवेसी टाइट रखो, अपनी लाइफ में डॉक्यूमेंट्री मत बनाओ, और हाँ, लाइफ में ड्रामा कम।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कदर करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: संसार का।
1: यहाँ हमें ऑफिस से हाफ डे तक नहीं मिलता और इस एम्प्लॉय को मिल गया इतना स्पेशल गिफ्ट। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आज हंसी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ पर आज का मैं सोशल स्यापा लेकर आई हूँ। ये सोशल स्यापा देख करना हर एम्प्लॉय का खून जलने वाला है, बिकॉज जॉब सेटिस्फेक्शन का लेवल तब अलग ही होता है जब कंपनी अप्रिसिएशन भी ग्रैंड हो। सो भाई, यहाँ पर एक इंसिडेंट आया है सामने, जहाँ पर चाइना की कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट और रिटेन करने के लिए एक यूनिक इनिशिएटिव लेकर दिया है। जैसे कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि लॉन्ग टर्म लॉयल एम्प्लॉयज जितने भी है ना, उन्हें फ्री फ्लैट गिफ्ट किए जाएंगे। और भाई, इसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया है पूरा। जो भी एम्प्लॉय 5 साल अपने कंप्लीट कर चुका है इस कंपनी में, उन्हें एम्प्लॉय एलिजिबिलिटी के अंदर रखा जाएगा और इतना ही नहीं, उन्हें फ्लैट्स दिए जाएंगे उनके ऑफिस के पास। साथ ही करोड़ की वैल्यू वाले होम्स हैं ये सारे, ऐसे वैसे घर नहीं है। सो भाई, बहुत ही अच्छा एक लेविश गिफ्ट इन्हें मिल चुका है। सो भाई, आज के सोशल स्यापा से हमें ये मैसेज जरूर मिलता है, एम्प्लॉय की लॉयल्टी की वैल्यू जरूर करें, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस जरूर प्रोवाइड करें एंड अपने एम्प्लॉयज को अप्रिशिएट जरूर करें। आई नो सैलरी इम्पोर्टेंट है, पर अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट एम्प्लॉयज को ट्रूली कनेक्टेड फील कराता है। ऐसे आइडिया सिर्फ वर्क प्लेस नहीं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी बिल्ड करते हैं। सो माई डियर लिसनर्स, अगर आपका बॉस खड़ूस है तो फटाफट से जाइए, उन्हें आज वाला इंसिडेंट बताइए और उन्हें ये भी बताइए कि एक एम्प्लॉय की लॉयल्टी को वैल्यू करना कितना ज्यादा जरूरी है, सो दैट कि उनकी कंपनी भी प्रॉफिट में आ सके। सो ऐसे ही सोशल से आपस आपके साथ लाते रहूंगे, लेकिन ऐसे में से ब्रेक के बाद, तब तक एंजॉय कीजिए प्यासा ट्रक, बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: अपनी वाइफ को हैकर्स और रोड के माइकल शुमाकर वर्नबी से बचा के रखो। हैकर्स ऐसे फिशिंग करते हैं जैसे हम फिर समोसे का पोस्टर देख के दौड़ते हैं। पर तुम शेडी लिंक मत खोलना, वरना तुम्हारा डेटा उड़ जाएगा इतनी स्पीड से कि गूगल मैप्स भी बोल देगा रिकैलकुलेटिंग लाइफ। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो, पासवर्ड 123 मत लिखना, ये देख के तो हैकर भी बोल देगा भाई इतना आसान क्या। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, एप्स अपडेटेड रखो, वरना स्कैमर्स पार्टी मनाकर तुम्हारे ही अकाउंट में नाचने लगेंगे।

0: सचिन ये क्या कर रहा है तू?
1: क्या हो रहा है भाई?
2: पापा रोमांटिक सीन लिख रहा हूँ।
1: यहाँ किस तरह बीच सड़क पर नाच कर
2: फील कर रहा हूँ।
1: अरे फील क्या कर रहा है डफर, सब लोग देख रहे हैं।

0: मलयाली क्रिश्चियन है वो जैसी।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
2: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहे हैं आप, सुनो तो
2: इरशाद।
1: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
1: हाँ जी।
2: अच्छा,
1: और उन्होंने पूछा क्या?
2: क्या पूछा?
1: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
1: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
1: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हाथ ली हुई है।
1: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
1: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
2: बाय।
1: सुनो तो, कहाँ चली?
2: बाय।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

तो बहुत सारी मस्ती के बाद, बहुत सारी अपडेट्स के बाद और बहुत सारी ट्रेंडिंग म्यूजिक के बाद फाइनली अब टाइम हो गया मेरा यहाँ से जाने का। और सुबह 7 बज रही थी, अब 10 बजने वाले हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा। आप फिर मिलेंगे कल सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो मारानी 89.6 FM पर। लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, साथ ही एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी के मॉर्निंग एक्सप्रेस के साथ बाकी शोज को और बने रहिए।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: अपनी वाइब को हैकर्स और रोड के माइकल शुमाकर वर्नबी से बचा के रखो। हैकर्स ऐसे फिशिंग करते हैं जैसे हम फ्री समोसे का पोस्टर देख के दौड़ते हैं। और तुम शेडी लिंक मत खोलना, वरना तुम्हारा डेटा उड़ जाएगा इतनी स्पीड से कि गूगल मैप्स भी बोल देगा रिकैलकुलेटिंग लाइफ। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो, पासवर्ड 123 मत लिखना, ये देख के तो हैकर भी बोल देगा भाई इतना आसान क्या। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, ऐप्स अपडेटेड रखो, वरना स्कैमर्स पार्टी मनाकर तुम्हारे ही अकाउंट में नाचने लगेंगे।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है. होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं.
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से. हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है.
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक. हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर.

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले मौसम के बारे में। फरीदाबाद के गलियारे की चर्चाएं फिल्मी फ्लेवर से पहले। यहाँ बात करते हैं मौसम की, तो फरीदाबाद का मौसम इस वक्त 33 डिग्री सेल्सियस AQI काफी कम होता नजर आया, जैसे कि आप सब जानते हैं कल के दिन फरीदाबाद में अच्छी खासी बारिश हुई, जहां बारिश का लोगों ने लुत्फ उठाया, गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली और गर्मी की राहत के साथ ही साथ AQI से भी राहत मिलती नजर आई। इस बारिश ने AQI काफी कम कर दिया, मॉडरेट कंडीशन पर आ गया 97 इस टाइम फरीदाबाद शहर का AQI बना हुआ। बारिश से गर्मी की भी राहत है, चलिए कुछ दिन तक तो मौसम ठीक रहने वाला है, इतनी बारिश से ऐसे आसार हैं। और मौसम विभाग के हिसाब से आज के दिन भी बादल छाए रह सकते हैं और बारिश आ सकती है, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। बाकी ऐसी और चर्चा लेकर के आता रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक ओनली ऑन रेडियो मारा।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यह दोस्तों अब हम बात करते हैं फरीदाबाद के पिटारे से, जहाँ सब जानते हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ साइबर फ्रॉड या कुछ फ्रॉड्स होते नजर आते हैं। अब कुछ ऐसे ही फ्रॉड देखने को मिला, जैसे आप सब जानते हैं कि केदारनाथ यात्रा हर शख्स होता कि कभी मौका मिले तो केदारनाथ यात्रा पे जरूर जाए। केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर एक शख्स से 1,87,000 रुपए का साइबर फ्रॉड होता नजर आया। जी हाँ, हुआ कुछ यूं कि इंटरनेट पर हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए उन्हें कॉन्टैक्ट किया, जहां उन्हें सुबोध कुमार नाम एक व्यक्ति मिला मोबाइल नंबर, और उन्होंने गुप्ताशी से केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर बुकिंग कराने का भरोसा दिया, और वहीं अलग अलग ट्रांजेक्शन के थ्रू इन्होंने इतनी पेमेंट करी, जहां पे इस पेमेंट में 60,000 इंश्योरेंस के नाम पर भी लिए गए। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, प्लीज इन चीजों से सावधान रहें। आप लोग केदारनाथ यात्रा पे जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर बुकिंग कर रहे हैं, तो ऑफिशियल वेबसाइट से करें, कहीं अननोन नंबर्स या अननोन वेबसाइट्स या ऑनलाइन स्क्रीनिंग के थ्रू नंबर्स ना लें। होटल बुकिंग है, बाकी अगर कहीं भी आप टूर एंड ट्रैवल में जा रहे हैं, देखिए समर वेकेशन आएंगे तो जरूर हर कोई घूमने जाता है, तो ऐसी चीजों से सावधान रहें, ऑफिशियल जगह से ही नंबर लें, ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुकिंग करें, जिससे कि आपके कोई फ्रॉड ना हो। बाकी ऐसी चर्चाएं करता रहूंगा, उससे पहले एक और

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों हम बात करते हैं फरीदाबाद के खिलाड़ियों के बारे में, जहाँ आज दिन फरीदाबाद के खिलाड़ी कुछ बेहतरीन प्रदर्शन करके खिताब जीत करके फरीदाबाद शहर का नाम रोशन करते नजर आते हैं। बात करते हैं अभी नैना कौशिक की, जो कि नेशनल कुश्ती कॉम्पिटिशन में रजत पदक जीत करके अच्छा खासा स्थान हासिल किया। यहाँ बात करता हूँ 26वीं ओपन सीनियर नेशनल रैंकिंग कुश्ती ऑर्गेनाइज की, जहाँ पे हरियाणा की पहलवान यानी कि खुशी को 12-03 अंक से हराती नजर आई। कॉन्ग्रेचुलेशन 26वीं ओपन चैंपियनशिप में टूर्नामेंट में मेडल अपने नाम करने को लेकर के हर कोई बहुत खुश है, और साथ ही साथ मैं कहूँगा इनके कोचेस को भी कॉन्ग्रेचुलेशन, जो इतना बेहतरीन आपको सिखाया, आपको लगन को आगे बढ़ाया, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और ना कि नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जा करके फरीदाबाद शहर का नाम रोशन करें और हमारे देश का नाम भी रोशन करें। बाकी चर्चा करते रहूँगा, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: अर्ज क्या है?
0: अर्ज अर्ज
1: अर्ज करते हैं
0: इरशाद,
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वार्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वार्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधारा थेरेपी, वार्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
5: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
6: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं ओजी प्लेटफॉर्म के बारे में। ओजी पर कुछ और कहानियां जिनका लुत्फ उठाया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं वर्जा 2 के बारे में। जी हाँ, इसे स्ट्रीम किया जा चुका है। एक कमिंग ऑफ एज बायोपिक स्टाइल मलयालम तमिल टाइटल कहानी के साथ द कैप और लव स्टोरी। आदि विशेष मृणाल ठाकुर की एक कहानी जो कि स्ट्रीम हुई और अच्छा खासा प्यार बटोरती नजर भी आई। पंजाबी रैप सीन ड्रामा सीज लोके, इसको भी स्ट्रीम किया जा चुका है। नए जनरेशन की म्यूजिक क्राइम ड्रामा वेब सीरीज लव इंश्योरेंस कंपनी LIK, टाइटल बहुत धमाकेदार कुछ यूनिक सा तमिल स्काई फिक्शन रोमांटिक कॉमेडी और जो चक जीवन रिलेशनशिप प्रेमिस भी देती है। इन सभी कहानी को ओटी प्लेटफॉर्म पर लुत्फ उठाइए और बताइए कौन सी कहानी आपको ज़्यादा बेहतरीन लगी। बाकी ऐसी और भी चर्चाएं लेकर के आता रहूँगा उस सुबह का और खूबसूरत सा ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM को छटके। और ये गाना आप सभी

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
4: ए जय माताजी ने हम कहीं कहूशू के वाह फरे वादल फरे वायरो फरे, पण एक वार बोल्या पछी मारा मित्रों आ मित्रों कदी ना फरे के

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी प्ले। यहाँ दोस्तों हम बातें करते हैं सिनेमा के गलियारे से। थलपति विजय बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस हिट्स के बाद, जब आप सब जानते हैं थलपति विजय की अगर बात की जाए तो सिनेमा के गलियारों से यानी कि सिल्वर स्क्रीन से अब रुख मोड़ते हुए अब सीएम बन चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, आजकल इनकी चर्चाएं बहुत है तो क्यों ना मैं इंस्टा हम भी चर्चा कर लेते हैं इनकी बेस्ट हिट्स के बारे में। सबसे बड़ी हिट रही इनकी लियो, जहां विजय का अब तक का हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म बनी रही। लोकेश कनगराज फिल्म वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ से ज्यादा कमाई नजर आई। इसके अलावा उनकी टॉप ग्रोसर लिस्ट में द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गोट, वरिशु बिगल, मैसल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये सभी फिल्में डोमेस्टिक और वर्ल्ड वाइड दोनों लेवल पर अच्छी कमाई करते नजर आई। आर्टिकल गैलरी हल फिल्म के साथ शॉर्ट बॉक्स ऑफिस फिगर और रिलीज कॉन्टेक्स्ट यहाँ आता रहा और लियो ने विजय का सबसे बड़ा इंटरनेशनल ब्लॉकबस्टर साबित करके दिखाया। ऐसी और भी चर्चाएं लाता रहूंगा, उससे पहले एक और बढ़िया सा गाना ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: शीशी।
1: यारो मुझे मुआफ करो, यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम, पी लीजिए हमारे हाथ से दो चार जाम, पी लीजिए।

0: शराबी।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर अब फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक, हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।
7: कुड़ी मैनू कह

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यार दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिनेमा के गलियारे से एक बढ़िया कहानी और गाने के बारे में। हिमेश रेशमिया अपने नए गाने की लॉन्चिंग के बारे में जानकारी देते हिमेश ने यह ट्रैक अनाउंस किया और वीडियो में मानुषी छल्लर दिखाई दे रही है। हिमेश के गाने का टीजर और फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर वायरल होता नजर आया। प्रोमो क्लिप्स, शॉर्ट रील्स सबके सामने आ गई। और जहां बात करी प्रोडक्शन टीम, रजत नागपुर और अंशुल गर्ग जैसे नाम जुड़े हुए और गाने की वाइब 90s स्टाइल नॉस्टैल्जिया पार्टी टोन की नजर आती है। बॉयज का ग्लैमर लुक भी चर्चा में बना हुआ। 15-20 सेकंड के वीडियो प्रोमो ने ही अच्छा खासा प्यार बढ़ा और गाना भी धमाल मचाने को तैयार है। हिमेश का काफी लंबे अरसे बाद एक बढ़िया गाना सबके सामने, बाकी ऐसी चर्चा करूंगा उस पर।

0: शुरू हो जाओ।
1: तो अर्ज किया है?
0: अर्ज अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना।
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद इरशाद।
1: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं, पसीना भिगा देता है।
0: अरे रे।
1: अरे पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: मारी हरकतें जानता होगा।
1: अब पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोए हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: आप तो बोलता रहे भाई, हम चलते।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं एक और बढ़िया कहानी के बारे में, जहाँ देखिए बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ मूवीज रिलीज होते नजर आती हैं, वहीं कुछ गाने ट्रेलर और ना जाने कितनी ही चर्चा सिनेमा के गलियारों में कुछ नए स्टार्स तो कुछ नए डायरेक्टर्स के साथ। बात करता हूँ यहाँ पे रामचरण स्टार परि और वरुण धवन स्टार है जवान तो इश्क होना है, कई कई एक दूसरे के पास रिलीज। जी हाँ, पहली लगभग 4 जून और है जवान तो इश्क होना है 5 जून को रिलीज होने वाली है। पहली तारीख बदलकर 4 जून कर दी गई, जिससे वरुण की फिल्म के अगला दिन रिलीज होने के करीब आ गई। दो फिल्म पास पास रिलीज होने वाली हैं, आप देखते हैं यार कौन सी कहानी एक दूसरे को पीछे छोड़ेगी तो कोई कहानी आगे बढ़ेगी। एक क्लैशेस तो होने वाले हैं, क्लैश फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा होते हैं और अब क्या कर सकते हैं, मूवी तो रिलीज करनी है। कैलेंडर लॉकअप हो चुका है दोनों ही कहानियों का, देखते हैं टॉक्सिक का जैसी फिल्में स्केड्यूलिंग और बाद उसके पोस्टपोन होने से सारा कैलेंडर लॉकअप हुआ, यानी रिलीज शिफ्टिंग की वजह ये क्राउडिंग बनी। अब देखते हैं दोनों कहानियाँ अब रिलीज तो हो रही हैं, किस कहानी को ज़्यादा प्यार मिलेगा या प्यार बटेगा ये तो रिलीजिंग के दौरान ही पता चलेगा। बाकी ऐसी भी चर्चा करता रहूँगा, उससे पहले और

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
5: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
4: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
6: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
4: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
6: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
4: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: पीजे सरकार।
1: कहने था कि मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

इसी गाने के साथ फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं सिनेमा के कैलेंडर की। आज 14th में और बर्थडे है एक ऐसे एक्टर का जिन्होंने हमेशा अपनी काम पर्सनालिटी और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीता। बात करूँ यहाँ पे सचिन खेदेकर के बारे में जो कि हिंदी सिनेमा के साथ साथ मराठी फिल्म्स और टेलीविजन में भी काफ़ी काम करते नजर आ। उनकी एक्टिंग की सबसे खास बात है उनका नेचुरल फ्लो, डायलॉग डिलीवरी हो या फिर इमोशनल सीन, सब कुछ काफ़ी रियल लगता है। इसी वजह से उनके कैरेक्टर्स ऑडियंस को बिलीवेबल फील होते हैं। इनके बारे में बहुत ही चर्चाएं करने वाला हूँ लेकिन सुनाऊंगा उससे पहले कुछ बढ़िया से गाने ओनली ऑन रेडियो महाराज।

0: बन्नो की सहेली से लेकर दीदी का दीवाना देवर पूरे सिनेमा की अपडेट मिलेगी ओनली इन फिल्मी फ्लेवर।
1: बंदा है ये खुद से बेगाना, अजी बंदा है ये खुद से बेगाना।

0: आती जाती सांस जाने कब से गा रही है, कहीं बीते ना तो कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन जाता रहे।
1: इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बातें करते हैं सिनेमा के गलियारे से, सिनेमा का कैलेंडर का है यहाँ वक्त और हम बात कर रहे शब्द के बारे में। शशन केकर की अगर बात की जाए तो अस्तित्व में उनकी सीरियस परफॉर्मेंस को काफी प्रेज मिला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो में उन्होंने हिस्टोरिक डेप्थ दिखाई और सिंगम में उनका मैच्योर और पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस ऑडियंस को काफी पसंद आया। उनका स्टाइल फ्लैशी नहीं लेकिन इम्पैक्टफुल जरूर होता है। सचिन केलकर थिएटर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और इसी थिएटर ट्रेनिंग ने उनकी एक्टिंग को और रिफाइन बनाया। वो उन एक्टर्स में से हैं जो रोल को ओवरप्ले नहीं करते, बस नेचुरली परफॉर्म करते हैं। इनके हर किरदार अपने से डिफरेंट रखे और हर किरदार को बेहतरीन परफॉर्म करते सबके सामने लेकर के आया। बाकी ऐसी अभी चर्चाएं लेकर के आता रहूंगा, लेकिन आज नहीं उसमें मुलाकात होगी कल के दिन सेम टाइम सेम जगह। बात तब सुन रहे रेडियो मार।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो दिल से।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: खराब सड़कों से छुटकारा, सुरक्षित सफर हमारा।
2: दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी बिना किसी वजह से डांस कर रही है तो समझ जाइए सड़क पर गड्ढे अपनी धुन पर नाच रहे हैं। कब तक ये झटके सहेंगे? अब आइए आवाज उठाएं और बदलाव लाएं।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

सोचिए, एक कंसर्ट चल रहा है, हजारों लोग गा रहे हैं हम रहे या ना रहे कल, और स्टेज पर खड़ा इंसान जिसका गाना अमर हो गया, खुद उस रात हमेशा के लिए अमर हो जाता है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। ये कहानी है उस आवाज की जो कभी क्लासिकल ट्रेनिंग से नहीं निकली, जो रियलिटी शो से फेमस नहीं हुई, पर जो हर दिल का पर्सनल प्लेलिस्ट बन गई। के 23 अगस्त 1968, दिल्ली। एक सिंपल मलयाली फैमिली, ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड, ना म्यूजिक इंडस्ट्री का कनेक्शन, बस एक लड़का जिसे बचपन से गाने का शौक था। केके ने स्कूल और कॉलेज के दिनों में दोस्तों के सामने गाना शुरू किया। उनके आइडल्स किशोर कुमार, वो कहते थे मैं किशोर दा को सुन सुन कर ही सीखा हूं। उन्होंने डीयू के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, पर इंटरेस्टिंग बात यह है उन्होंने कभी म्यूजिक को फॉर्मली सीखा ही नहीं। नो गुरु नो रियाज का ट्रेडिशनल सिस्टम। कॉलेज के बाद म्यूजिक नहीं बल्कि मार्केटिंग जॉब। हाँ, 6 महीने तक वो एक होटल इंडस्ट्री में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थे। शादी भी जल्दी हो गई उनकी बचपन की दोस्त ज्योति से, और फिर एक दिन उन्होंने डिसाइड किया या तो मैं जिंदगी भर रिग्रेट करूंगा या रिस्क लूंगा। 1994 वो मुंबई आ गए, सपना सिंगर बनना, पर मुंबई में स्ट्रगल आसान नहीं था। उन्होंने 3500 से ज्यादा जिंगल्स गाए एड्स के लिए, पेप्सी, कोका कोला, सेंट्रो, आवाज पहचान में आने लगी पर चेहरा नहीं। फिर आई एक फिल्म 1996 में माचिस, सॉन्ग छोड़ आए हम वो गलियां, और पहली बार लोगों ने पूछा ये किसकी आवाज है। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी जर्नी जो प्लेबैक सिंगिंग का डेफिनेशन बदलने वाली थी, और फिर कैसे तड़प तड़प के और एक सितारा जन्मा, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: क्या आपने वो गाना सुना है, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। हाँ, और कभी सोचा है कि अगर ये गाना किसी और ने गाया होता तो क्या उतना ही दर्द महसूस होता। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम बात कर रहे हैं सिंगर केके की। 1999 फिल्म आई हम दिल दे चुके सनम, म्यूजिक इस्माइल दरबार का था और गाना तड़प तड़प के। इस गाने ने केके को सिर्फ सिंगर नहीं दर्द की आवाज बना दिया। उनकी आवाज में एक खास बात थी, वो ओवर ड्रामेटिक नहीं होते थे ना अननेसेसरी हरकतें, बस सीधा दिल से। 2000 में उनका एल्बम आया पल, और टाइटल ट्रैक आज भी फेयरवेल सॉन्ग का किंग है, पल याद आएंगे पल। याद है वो गाना? केके ने प्रूव कर दिया वो सिर्फ फिल्मों के सिंगर नहीं, एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट भी हैं। उन्होंने रोमांटिक सॉन्ग्स दिए, तू ही मेरी शब है, उसके बाद जरा सा खुदा जाने, और रॉक वाइब्स में भी कमाल किया। आंखों में तेरी, इज द टाइम टू डिस्को, उनकी वर्सेटैलिटी उनका सीक्रेट वेपन थी। इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने कभी अननेसेसरी लाइमलाइट नहीं ली, ना कॉन्ट्रोवर्सीज, ना रियलिटी शोज में जज बनना। वो बस गाते रहे और हर जनरेशन का प्लेलिस्ट का हिस्सा बन गए। और कैसे द मोस्ट अंडररेटेड सुपरस्टार बने सुपरस्टार, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।
1: कार्निवल, द लास्ट राइड, किंग।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

हंसाता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज, बस ये लगता है यू शुड नो। है मन्नू दास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

कुछ लोग अवार्ड फंक्शंस में चमकते हैं और कुछ लोगों के दिल में। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। एंड आज हम लोग बात कर रहे हैं प्लेबैक सिंगर केके की। और जो लोग दिल में आते हैं ना, केके उसी कैटेगरी में आते थे। उन्होंने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली इन सब में गाने गाए। साउथ इंडिया में भी उनका क्रेज उतना ही था। उनकी आवाज का टेक्सचर यूनिक था, ना अरिजीत जैसा सॉफ्ट नेजल, ना सोनू निगम जैसा क्लासिकल कंट्रोल, ना शान जैसा ब्रीजी टोन। फिर भी सबसे अलग उनकी सिंगिंग में एक ऑनेस्टी थी, जैसे वो एक्टिंग नहीं कर रहे हो, सच में फील कर रहे हो। इंडस्ट्री में सब उनकी सिंप्लिसिटी की तारीफ करते थे। कंसर्ट्स में वो हमेशा लाइव गाते थे, ऑटो ट्यून का जमाना था, पर केके की आवाज बिना फिल्टर के भी परफेक्ट थी। उन्होंने कभी अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया सर्कस नहीं बनने दिया। फैमिली उनकी प्रायोरिटी थी। उनके दो बच्चे नकुल और तमारा, वो कहते थे मैं सिर्फ गाना चाहता हूँ, फेम के पीछे नहीं भागता। और शायद इसीलिए वो सबके दिल के इतने करीब हो गए। और कैसे 31 मई 2022 की वो रात इतिहास बन गई, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

कभी जिंदगी अपना सबसे बड़ा ट्विस्ट बिना वार्निंग के देती है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम बात कर रहे हैं प्लेबैक सिंगर केके की। 31 मई साल 2022 कोलकाता में कॉलेज फेस्ट, केके स्टेज पर थे, एनर्जी फुल, क्राउड पागल हो रहा था। उन्होंने अपने हिट गाने गाए स्वेटिंग हेविली, पर वो रुके नहीं, फैंस के लिए परफॉर्म करते रहे। कंसर्ट के बाद होटल वापस गए और अचानक तबीयत खराब, हॉस्पिटल ले जाया गया और रात को न्यूज आई केके इज नो मोर, कार्डियक अरेस्ट। पूरा देश शॉक में था, सोशल मीडिया भर गया था, यार ये सच नहीं हो सकता। सब लोग एक ही लाइन शेयर कर रहे थे, हम रहे या ना रहे कल। आयरनी देखिए, वो गाना जो अमर होने की बात करता है वो उनकी पहचान बन गया। और कैसे बने वो लेजेंड करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: राजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो,

जब एक सिंगर हमारे बीच में नहीं रहता तो क्या वो सिंगर सच में चला जाता है जब उसकी आवाज हर जगह बजती हो। आज भी जब कोई फर्स्ट लव फील करता है तो गाना बजता है जरा सा। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम बात कर रहे हैं इंडियन प्लेबैक सिंगर

आज भी जब उनकी आवाज सुनाई देती है लगता है वो कहीं नहीं गए, क्योंकि लेजेंड्स मरते नहीं है, वो सिर्फ प्लेलिस्ट बन जाते हैं। तो ये थी केके की कहानी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें मैसेज करके जरूर बताइएगा। नंबर है हमारा 9654896896। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आप सभी से फिर से मंडे टू फ्राइडे शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। अभी फिलहाल आप सभी के लिए एड शीरन की आवाज में सिमेट्री।

गाने के साथ एंड यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड विद मी आरजे गीत। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो अनाउंसमेंट्स या बिग प्रॉमिसेस से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, एक किसान के घर से। सोचिए वो गांव जहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल का आइडिया ही नहीं था, जहाँ रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज दोनों टाइट होती हैं, और एक बच्चा जो 7 साल की उम्र में अपने माता पिता से अलग हो जाता है, नॉट बिकॉज ऑफ चॉइस बट बिकॉज लाइफ ने उसको पहले ही टेस्ट पे डाल दिया। बदलते सर्कमस्टेंसेस के साथ उस बच्चे को समझ आ गया कि सर्वाइवल और सक्सेस दोनों के बीच एक थिन लाइन होती है, और वो लाइन बनाई जाती है। इंग्लिश नहीं आती मतलब काफी लोग पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि ये स्ट्रगल कर लेगा, लेकिन ये स्ट्रगल ही उसका बिगेस्ट टीचर बन जाता है। हाई एंड स्कूल्स, कोचिंग, फैंसी एनवायरमेंट, ये सब इस किड के पास नहीं थे। उसके पास एक चीज थी, खुद की क्यूरियोसिटी और सीखने की नीड। IIT के लिए पोस्टल कोचिंग तक इन्होंने खुद ही अरेंज की, और ये वो फेज था जब लोग कंफर्ट जोन में सेटल होकर बैठते हैं, वो स्ट्रगल से गुजरना भी नहीं चाहते, लेकिन इन्होंने स्टेप बाय स्टेप लिया कैसे चीजों को एनालाइज किया जाए, अपॉर्चुनिटीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और मिस्टेक से कैसे सीखा जाए। और फिर इन्होंने एक स्टार्टअप की तरफ ट्राई किया, एंड दैट फर्स्ट स्टार्टअप फेल भी हो गया था। सब कहते थे ये गलत डिसीजन था, लेकिन उस फेलियर ने उनको कुछ और ही लेसन सिखाया जो आज बहुत एंटरप्रेन्योर्स को मिसिंग लगते हैं, और वही फाउंडेशनल लेसन बैड लेट डिसीजन को शेप करते हैं, इवन जो उसको आज इंडिया के लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर प्लेटफॉर्म तक ले गया। पर अभी हम सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट को फील कर रहे हैं, नाम प्रोडक्ट ये सक्सेस सभी रिवील नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज रियलिटी बिफोर फेम, नॉट पॉलिश्ड, नॉट सिंप्लीफाइड, नॉट ट्रू स्ट्रगल। अभी हम यहाँ पर गाना सुनते हैं, गाने के बाद बताऊंगी कैसे ही टर्न जीरो रिसोर्सेज इनटू एन अपॉर्चुनिटी मैप एंड स्टार्टिंग बिल्डिंग समथिंग दैट टुडे सर्व मिलियंस। स्टे विद मी, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड। मैं हूँ आपके साथ।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड और मैं हूँ गीत। अगर आप अभी अभी मेरे साथ जुड़े हैं तो बता देती हूँ, आज हम किसी चमकदार सक्सेस स्टोरी की बात नहीं कर रहे, आज हम उस फेज की बात कर रहे हैं जहाँ लाइफ क्वाइटली इंसान को शेप करती है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी एक फार्मर के बेटे की कहानी तक हम पहुँचे थे, एक ऐसा बच्चा जो अपनी बहुत छोटी उम्र में अपने माता पिता से अलग हो गया। अब कहानी आगे बढ़ती है उस फेज में जो बाहर से नहीं दिखता। ये वो साल होते हैं जहाँ स्ट्रगल दिखाई नहीं देती लेकिन अंदर सब कुछ हैवी हो जाता है। प्रॉब्लम्स पैसे की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है फिट इन करना, नई जगह, नया लगेज और साथ में एक साइलेंट कंपैरिजन। बोलने से पहले सोचना पड़ता है और जब बोलने में डिले होता है तो लोग सुनना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे इंसान बोलना कम करता गया, नॉट बिकॉज आइडियाज नहीं थे बट बिकॉज एक्सप्लेन करना एग्जॉस्टिंग लगने लगा था। और इस फेज में इस कहानी का हीरो क्लासरूम में लाउड नहीं था, ग्रुप डिस्कशंस में लीड नहीं करता था बट ऑब्जर्व करता था, लोग कैसे डिसीजंस लेते हैं, कौन कैसे आगे बढ़ता है। और बिजनेस अनप्लग में हम जितने भी टाइकून्स की बात कर चुके हैं, मैंने अक्सर एक चीज नोट की है, वो हमेशा ऑब्जर्व करते थे, बोलने पर बिलीव नहीं करते थे। जब आपके पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं होते तो लर्निंग एक ऑप्शन नहीं रहती, वो हैबिट बन जाती है। सेल्फ लर्निंग यहीं से स्टार्ट होती है, बुक्स, नोट्स, प्रैक्टिस, नो शॉर्टकट, नो ग्लैमर। फेलियर भी आए, एफर्ट किए लेकिन आउटकम्स नहीं मिले। और यहाँ फेलियर ड्रामेटिक नहीं होते, बस एक रियलाइजेशन होता है ये अप्रोच काम नहीं कर रही है। यहीं पे एक शिफ्ट होता है, लक को ब्लेम करने की बजाय सिस्टम को समझने की कोशिश, वेयर एग्जैक्टली आई एम मिसिंग समथिंग, वेयर आई एम नॉट सीइंग क्लियरली। और यहीं से डेवलप होती है एक हैबिट प्रॉब्लम को रूट से देखने की। अभी मैं आपको नाम नहीं बता रही, ब्रांड का जिक्र भी नहीं, बिकॉज अभी कंपनी नहीं बन रही, सोच बन रही है। क्योंकि अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी और बताऊंगी कि कैसे ये थिंकिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से टकराती है और कैसे वहीं से एक बिजनेस आइडिया जन्म लेता है। सो स्टे विद मी, आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड।

0: महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: आज है साइबर सिक्योरिटी एंड रोड सिक्योरिटी का तंदूरी तड़का, जो आप सबके फोन से लोकेशन, कॉन्टैक्ट, फोटो, सबने हमेशा सब मांगे उन्हें बाय बाय बोलकर विदाई दे दो। और ईमेल्स लाइक क्लिक टू विन प्राइज और अकाउंट इज इन डेंजर या पार्सल इज अराइविंग, अरे मेरे भाई मैंने मैथ्स की किताब तक नहीं मंगाई, कौन सा पार्सल ला रहा है।

यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड, मैं हूँ गीत। अगर आप मेरे साथ अभी अभी जुड़े हैं तो अब वो मोमेंट है जहाँ सस्पेंस खत्म होने वाला है। जिस फार्मर के बेटे की हम बात कर रहे थे, जिसने अर्ली एज में सेपरेशन देखा, लगेज बैरियर्स झेले और क्वाइटली ऑब्जर्व करना शुरू किया, वो नाम है ललित केशरे, को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ग्रो। यस ग्रो, इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में से एक। बट बिफोर ग्रो बिकम एन ऐप ऑन मिलियंस ऑफ फोन्स, ललित वॉज जस्ट अ बॉय ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड एक्चुअली वर्क्स। इनका चाइल्डहुड कोई स्मूथ कर्व नहीं था। 7 साल की उम्र, उस एज में जब बच्चे सिर्फ रूटीन फॉलो करते हैं, स्कूल, होम, प्ले, उस एज में ललित अपने पेरेंट्स से अलग हो गए थे। विलेज बैकग्राउंड, नो इंग्लिश मीडियम स्कूल, नो एक्सपोजर। जब आप लगेज नहीं बोल पाते तो कॉन्फिडेंस भी बोरोड होता है, और जब कॉन्फिडेंस बोरोड हो तो आप ज्यादा सुनते हो, कम बोलते हो। ये वीकनेस नहीं थी, ये ट्रेनिंग थी। टाइम के साथ एडुकेशन ने डायरेक्शन ली, IIT रुड़की, देन कॉर्पोरेट एक्सपोजर। लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी एक चीज नोटिस करते गए, ये मनी सबके लिए नहीं बना है, सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है, इन्फॉर्मेशनल इमिडिएटिंग है, इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ रिच लोगों के लिए रखा गया है। और यहीं से आता है ग्रो का सीड, नॉट हाउ टू अर्न मनी बट हाउ टू सिंप्लीफाई मनी। ग्रो वॉज बिल्ड विद वन कोर थॉट, इफ आई डिडंट अंडरस्टैंड फाइनेंस अर्लियर देयर मस्ट बी अ मिलियन लाइक मी। आज ग्रो सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं है, इट हैज ओवर 40 मिलियन यूजर्स, मैनेज लैक्स ऑफ करोड़ इन एसेट्स, एंड ऑपरेट्स विद अ वैल्यूएशन रनिंग इनटू बिलियन ऑफ डॉलर्स। ललित केशरे हिमसेल्फ इंडिया के यंगेस्ट सेल्फ मेड फाउंडर्स में से गिने जाते हैं। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, ये नंबर्स इनकी पर्सनैलिटी डिफाइन नहीं करता। इंटरव्यूज देखो, टोन काम है, वर्ड मेजर्ड है, जैसे कोई इंसान अभी भी सोचता है और फिर बोलता है। शायद वही हैबिट जो बचपन में बनी थी। और अभी यहाँ पर वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो। क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

गाना है फ्रॉम द मूवी छावा और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। अब मैं उस पार्ट में हूँ जब ललित केशरे जो एक छोटे से गांव के किसान के बेटे थे अपनी स्टडीज पूरी करके प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं और ये वही मोमेंट है जब ग्रो की कहानी शुरू होती है। IIT में पढ़ते हुए ललित ने ये ऑब्जर्व किया कि इन्वेस्टिंग और म्यूचुअल फंड्स कितना ज्यादा कंफ्यूज करता है। बैंक्स, ब्रोकर, पेपर वर्क सब इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि नॉर्मल लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वही इन्होंने एक बात नोटिस की, अगर यार मुझे ही समझ नहीं आ रहा है तो लाखों लोग कैसे समझेंगे। कैंपस लाइफ में इन्होंने छोटे छोटे साइड प्रोजेक्ट्स किए, अपने दोस्तों को गाइड किया, फीडबैक लिया, स्लोली इनका ऑब्जर्वेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड

सेट शार्पन हुआ। ग्रेजुएशन के बाद कॉर्पोरेट जॉब्स में जाकर इन्होंने और डीपली देखा कि इंडिया में इन्वेस्टिंग आसान नहीं है। लोग ऑनलाइन इन्वेस्टिंग से डरते हैं, प्रोसेस लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है। ललित ने सोचा क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो सिंपल, सेफ और समझने में आसान हो। फिर उन्होंने को फाउंडर हर्ष जैन के साथ मिलकर टीम बनाई। फर्स्ट ऑफिस मिनिमल था, व्हाइट बोर्ड, चाय, ब्रेनस्टॉर्मिंग, टीम स्मॉल थी बट सुपर फोकस्ड, रूल सिंपल, यूजर पहले, प्रोडक्ट सेकंड और सब फास्ट डिसीजन में बिलीव करते थे। फिर इन्होंने ग्रो का फर्स्ट वर्जन बनाया, सिंपल डैशबोर्ड, म्यूचुअल फंड्स और बेसिक इन्वेस्टमेंट्स के लिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं, इंटरफेस क्लीन। सबसे पहले दोस्तों और अर्ली यूजर्स को टेस्ट किया, फीडबैक लिया और प्रोडक्ट इम्प्रूव किए, बग्स फिक्स किए, कंफ्यूजिंग स्टेप सिंप्लीफाई किए और धीरे धीरे प्रोडक्ट रेडी हुआ। फंडिंग ट्रिकी थी, इन्वेस्टर हेजिटेट थे क्योंकि स्मॉल टीम, अननोन फाउंडर्स, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स पहले से थे। ललित ने प्रोटोटाइप दिखाया, अर्ली यूजर स्टोरी शेयर की और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से ट्रस्ट बिल्ड किया। फंडिंग सिक्योर होने के बाद प्रोडक्ट का ग्रोथ फेज शुरू हुआ। ऑर्गेनिक ग्रोथ धीरे धीरे आई, रेफरल प्रोग्राम्स, कंटेंट बेस्ड एजुकेशन और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग किया, ऐप क्रैश फ्री, सिक्योर ट्रांजैक्शंस, कस्टमर सपोर्ट रेडी। ललित पर्सनली मॉनिटर करते थे, फीडबैक लेते थे और टीम हमेशा स्मॉल बट हाईली एफिशिएंट रही। आज ग्रो मिलियन ऑफ यूजर्स के लिए वन स्टेप इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, SIP, रिटायरमेंट प्लान्स, वैल्यूएशन बिलियंस में है। वही बच्चा जो गांव में चुपचाप ऑब्जर्व करता था, आज यूजर्स के पैसे और डिसीजन मैनेज कर रहा है। काम, मेजर्ड डिसीजन, स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट, वही हैबिट चाइल्डहुड से बनी थी और ग्रो की फाउंडेशन बनी। स्टे विद मी, आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड, मैं आपके साथ गीत बनी हुई हूँ।

0: हमेशा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं पहुंच गई हूं अब उस पॉइंट पर जहां स्टोरी खत्म नहीं होती बल्कि सीख देकर जाती है। ग्रो कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं था, हर फीचर, हर प्रोडक्ट डिसीजन, हर यूजर फीडबैक सब केयरफुली टेस्टेड ट्विक किया गया था और स्टेप बाय स्टेप स्केल हुआ। ललित और उनकी टीम ने सिर्फ आइडिया पर भरोसा नहीं किया बल्कि इन्होंने देखा कि यूजर्स क्या चाहते हैं, क्या समझ पाते हैं और क्या मिस कर देते हैं और इसी ऑब्जर्वेशन ने प्लेटफॉर्म को सिंपल, रिलायबल और ट्रस्टेड बनाया। आज ग्रो सिर्फ नंबर्स और वैल्यूएशन का गेम नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग कल्चर, ट्रस्ट बिल्डिंग और क्लैरिटी की कहानी है। यूजर्स फील करते हैं कि प्लेटफॉर्म इन्हें समझता है, गाइड करता है और उनके पैसे सेफ हैं। और सबसे खास बात, ये काम, मेजर्ड अप्रोच, डिसिप्लिन और पेशेंस जो स्मॉल डिसीजंस में दिखती थी अब बिलियन डॉलर स्केल तक पहुंच चुकी है। और कहानी हमें क्या सिखाती है, आइडिया सिर्फ थॉट नहीं है, एग्जीक्यूशन और फीडबैक लूप बनाते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी को ब्रेक करो, सिंप्लिसिटी चूज करो। ग्रोथ इंस्टेंट नहीं आती बट कंसिस्टेंट थॉटफुल स्टेप चेंज लाते हैं। तो लिसनर्स, ये स्टोरी इंस्पायर करती है लेकिन रियल फील देती है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी एक थॉट के साथ, बिग थिंग्स ग्रो क्वाइटली स्टेप बाय स्टेप विद ट्रस्ट एंड क्लैरिटी। तो आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड। कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
1: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: 69.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

कभी इमेजिन किया है एक ऐसी जगह जहाँ दूर दूर तक सिर्फ फूल ही फूल हो, ना ट्रैफिक का शोर, ना शहर की भाग दौड़, बस पहाड़, बादल और हवा में घुली हुई फूलों की खुशबू, जैसे किसी पेंटर ने जमीन पर अपने सारे कलर्स गिरा दिए हों। वो कहा है कि हर जगह फूल हो जरूरी तो नहीं, कभी कभी एक जगह ही पूरी जिंदगी महका देती है। और इसी के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे अंजलि, और आज कल्चर कारवा में हम चल रहे हैं एक ऐसी जगह जो सिर्फ देखी नहीं महसूस की जाती है। तो आइए आखिर जानते हैं ये जगह है कहाँ। आज बात कर रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की, यानी कि हिमालयाज की गोद में बसी एक खूबसूरत वैली जो कि इंडिया के उत्तराखंड में है। लगभग 12,000 फीट की हाइट पर बसी ये वैली सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि नेचर की लाइफ पेंटिंग है। और सबसे मैजिकल बात, ये वैली साल भर नहीं खुलती, सिर्फ मॉनसून के कुछ महीनों में ये पूरी दुनिया कलर से भर जाती है। वो कहा है कि कुछ खूबसूरतियाँ परमानेंट नहीं होती, शायद इसलिए और भी खास लगती है। आज बात कर रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स की, वापस आकर जानेंगे आखिर इस वैली की डिस्कवरी कैसे हुई। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: पर
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर है।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना।
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि और आज हम बात कर रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स की। तो चलिए आइए जानते हैं आखिर इसकी डिस्कवरी हुई कैसे। कहते हैं 1931 में ब्रिटिश माउंटेनियर फ्रैंक स्मिथ यहाँ एक्सीडेंटली पहुंच गए थे और जब उन्होंने इस जगह को देखा तो बस देखते रह गए और तभी इस जगह का नाम उन्होंने रख दिया वैली ऑफ फ्लावर्स। सोचिए एक ऐसी वैली जहाँ नेचर खुद सरप्राइज बनकर सामने आया। वो कहा है कि कुछ जगह तक रास्ते नहीं ले जाते, किस्मत ले जाती है। इसलिए वैली ऑफ फ्लावर्स को फूलों का समंदर कहा जाता है। यहाँ 500 से भी ज्यादा स्पीशीज के फ्लावर मिलते हैं, ब्लू कॉफी, कोबरा लिली, ऑर्किड्स, ना जाने कितने सारे फ्लावर्स। और बस ये फ्लावर्स धीरे धीरे कुछ हफ्तों में पूरे वैली का कलर पैलेट बदल देते हैं। कभी वैली पिंक नजर आती है, कभी येलो तो कभी पर्पल, जैसे नेचर हर दिन नई पेंटिंग बना रहा हो। इस वैली से जुड़े बहुत सारे माइथोलॉजी और बिलीफ्स भी हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए 150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।
2: सर, आपका KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
3: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स की। अगर इस वैली की बात की जाए तो बहुत सारे माइथोलॉजी और बिलीफ जुड़े हैं इस वैली से। लोकल स्टोरीज के मुताबिक ये जगह परियों का गार्डन भी कही जाती थी। कई लोग मानते थे कि यहाँ देवता और परियां आती हैं। और ऑनेस्टली जब बादल पहाड़ों को टच करते हैं और फूल हवा में मिलते हैं तो ये कहानियाँ सच सी लगने लगती हैं। वो कहा है कि हर खूबसूरत जगह के पीछे एक कहानी जरूर होती है, यही बताती है हमें वैली ऑफ फ्लावर्स। ये वैली सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि बहुत डेलिकेट भी है, इसलिए यहाँ प्लास्टिक और पॉल्यूशन पर स्ट्रिक्ट रूल है, क्योंकि कुछ जगहों को सिर्फ एंजॉय नहीं प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि नेचर हमें इतनी खूबसूरती फ्री में देता है, शायद केयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए इस वैली को आज भी उतना ही खूबसूरत बनाए रखने की कोशिश चलती है। लेकिन ये वैली सिर्फ देखने के लिए नहीं, यहाँ पर ट्रैक करने का भी अपना एक अलग मजा है। वैली ऑफ फ्लावर्स से जुड़ी हुई और भी बातें हैं जानेंगे इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना।
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
3: मैं मस्त म्यूजिक सुनते हुए रोड क्रॉस कर रही थी, एटीट्यूड फुल, ध्यान जीरो। तभी एक बाइक वाले भैया ब्रेक मार के बोले, दीदी रोड क्रॉस कर रहे हो या रनवे पे कैटवॉक? भाई मैं तो इतना शॉक्ड हुई कि मेरे एक्सप्रेशन देख कर ट्रैफिक लाइट भी शर्मा के ग्रीन से रेड हो गई। मगर उस दिन समझ आया, फोन पॉकेट में, ध्यान रोड पे और स्पीड जीरो पे रखो, जीब्रा क्रॉसिंग का यूज करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट देखो, राइडर्स हेलमेट टाइट और ड्राइवर्स सीट बेल्ट राइट, हंसी मजाक अपनी जगह पर सेफ्टी सबसे ऊपर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।
2: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
3: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
2: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
4: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
0: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
5: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स की। और आज हमने जाना है कितनी खूबसूरत हो सकती है कोई, लेकिन अगर इस वैली की बात की जाए तो यहाँ तक पहुँचना इजी नहीं, ट्रैक करना पड़ता है इस पूरी वैली तक पहुँचने के लिए। बीच में आते हैं पहाड़ी रास्ते, ठंडी हवा और कभी कभी बारिश, पर शायद यही स्ट्रगल की वजह से जब वैली सामने आती है तो आंखों को यकीन नहीं होता कि कोई वैली वाकई इतनी खूबसूरत हो सकती है जैसे नेचर ने मानो रिवॉर्ड दिया हो। अगर बात की जाए इस वैली की तो वैली ऑफ फ्लावर्स सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, ये रिमाइंडर है कि दुनिया में अब भी ऐसी जगहें हैं जहाँ नेचर इंसान से ज़्यादा पावरफुल लगता है। वो कहा है कि हर फूल की उम्र छोटी होती है पर उसकी खुशबू याद रह जाती है, बिल्कुल कुछ अफसानों की तरह। अगर कभी ज़िंदगी में बहुत भाग दौड़ लगने लगे तो एक बार वैली ऑफ फ्लावर्स ज़रूर जाना। हो सकता है जो सुकून आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपको इस वैली में मिल जाए। सो आज हमने बात की वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में। कल्चर कारवा में आज हमने जाना एक ऐसी जगह के बारे में जो अपनी महक से हमारी जिंदगी को और खूबसूरत बना देती है। कल फिर मिलेंगे एक और जगह, एक और कहानी और एक नई सफर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: मैं मस्त म्यूजिक सुनते हुए रोड क्रॉस कर रही थी, एटीट्यूड फुल, ध्यान जीरो। तभी एक बाइक वाले भैया ब्रेक मार के बोले, दीदी रोड क्रॉस कर रहे हो या रनवे पे कैटवॉक? भाई मैं तो इतना शॉक्ड हुई कि मेरे एक्सप्रेशन देख के ट्रैफिक लाइट भी शर्मा के ग्रीन से रेड हो गई। मगर उस दिन समझ आया, फोन पॉकेट में, ध्यान रोड पे और स्पीड जीरो पे रखो। जीब्रा क्रॉसिंग का यूज करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट देखो, राइडर्स हेलमेट टाइट और ड्राइवर्स सीट बेल्ट राइट। हंसी मजाक अपनी जगह पर, सेफ्टी सबसे ऊपर।

0: केवाईसी अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और एटीएम दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा केवाईसी तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहाँ, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

संग दी रुत तेरे प्यार वाली रंग रंग दी दिल तेनु चुमदा ते अख संग दी मुल केड़ा

चुन के सानू प्यार दे भुलेखे विच पा के सानू प्यार दे भुलेखे विच पा के ते खौर माही किथे रह गया सानू नहर वाले पुल ते बुला के सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते खौर माही

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।
0: हाँ जी, तो कैसे हो आप सब, अच्छे ही होगे, और ये मौसम को देखकर तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया होगा आपका दिल, क्योंकि भले ही पूरे दिन भर धूप थी बट उतनी गर्मी नहीं थी जितनी अभी दो दिन पहले थी। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। मौसम की बात करूँ तो 40 डिग्री, 41 डिग्री, मैक्सिमम 40 डिग्री तक आज गया था टेम्परेचर, और अभी की अगर बात करूँ तो अभी है 38 डिग्री सेल्सियस, और गर्मी है नो डाउट बट उतनी नहीं है जितनी होती है मई में, बट वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी बस कुछ ही दिनों के बाद। और देखो अब मैं आ चुका हूँ ना, तो अब अगले 3 घंटों तक खूब सारी बातें होने वाली है, मस्ती होगी, गाने चलेंगे दिल्ली से फरीदाबाद, पूरे ऑल ओवर इंडिया, और साथ ही साथ विदेशों की भी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। और डू यू नो वॉट, ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन लड़की रह रही है, उसने वीडियो बना के डाली है, और इसके अलावा फ्यूल कन्वर्जेशन तो बातें होती हैं जो मैं आपसे कर रहा हूँ, फ्यूल कन्जर्वेशन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि एक और वीडियो आई है, वो आई है न्यूजीलैंड से। तो ये दोनों तो इंडियन है बट रह रहे हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ का पूरा किस्सा सुना रहे हैं। क्या है पूरी कहानी वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा, तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। खूब सारी बातें होने वाली, मस्ती होने वाली, और अगर आप लोगों को मुझसे बातें करनी है तो जी नंबर है मेरा 9654896896, इस पर कॉल या मैसेज किसी भी टाइम आप लोग कर सकते हैं। एंड हाँ, एक और बात, गर्मी अब बढ़ने वाली है, नहीं नहीं बाहर नहीं, मेरे शो में गर्मी बढ़ने वाली है, क्योंकि मैं आ चुका हूँ ना गाने चला रहा हूँ आप लोगों के लिए। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

तो गाइस कल शाम को आप लोग कहां पर थे जिस टाइम इतनी तेज वाली आंधी आई थी, उसके बाद बारिश हुई और बारिश के साथ साथ थोड़ी सी बर्फ भी गिरी। नहीं नहीं, ग्लासों में नहीं गिरी, आसमान से गिरी थी। स्वागत है जी आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि फरीदाबाद में काफ़ी सारी जगह पर कल ओले पड़े थे और उन ओलों की वजह से नुकसान कुछ नहीं हुआ, बस ये है। और इसी के साथ साथ बता दूं आपको, अब जो ये बारिश थी ना इस महीने की, मुझे लगता है ये आखिरी बारिश थी, क्योंकि आने वाले अब 9 से 10 दिन बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल अच्छा वाला सूखा पड़ने वाला है और वो नौ तपा वाली गर्मी भी आएगी। और साथ ही साथ आपको बता दूँ कि कुछ लोग इसमें मेडिटेशन भी करते हैं, तपस्या जैसे कहते हैं, अंग्रेज़ी में नहीं, हिंदी में तपस्या कहते हैं, अंग्रेज़ी में कहते हैं बिल्कुल रेड अलर्ट ऑफ हीट वेव, वो भी आ सकता है बस कुछ ही दिनों में, क्योंकि गर्मी बढ़ने वाली है और मौसम विभाग कह रहा है कि 43 टू 44 डिग्री सेल्सियस इस बार टेम्परेचर पहुंच जाएगा पीक पे, 45 भी जा सकता है, बट हम प्रे करेंगे कि 45 ना ही जाए, क्योंकि देखो हम लोग तो प्रिविलेज्ड हैं, हम लोग ऑफिस में आते हैं, एसी में बैठ जाते हैं, घर में कूलर एसी चला सकते हैं, बट सोचो उनके बारे में जो लोग रोड के किनारे बैठे हैं, दिन में वो क्या कर सकते हैं, बस पेड़ के नीचे बैठ के हाथ से हवा कर सकते हैं, बस उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते वो लोग इस गर्मी का। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ी सी भगवान से बोलो कि दया कर दो हे भगवान हम पे, और थोड़ी सी बारिश और कर देना कुछ दिन बाद, ताकि ये गर्मी ऐसी निकल जाए जल्दी से। और अभी फ़िलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने चलने वाले हैं और उनमें से ये गाना रेडियो महारानी पर।

0: कर गए।
1: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
2: इंटरनेट मीडिया अकाउंट या मोबाइल फोन पे पैसे की मांग पर भरोसा ना करें। किसी भी मैसेंजर ऐप पर अनजान वीडियो कॉल से सावधान रहें।
1: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।

अगर मैं आपको बोलूं कि आप लोग एक दिन के, सिर्फ और सिर्फ एक दिन के 8,000 से भी ज्यादा कमा सकते हो, क्या आप लोग बिलीव करोगे? आप लोग बोलोगे भाई इंडिया में तो हो ही नहीं सकता। एंड हाँ, इंडिया का ये है भी नहीं, मगर जिसने कमाए हैं वो जरूर इंडियन है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। अब जैसे इंडिया में चलता है ना स्विगी, ब्लिंकिट एंड ऑल, वैसे ही एक ऐप है जिसे कहते हैं डोर डैश। अब ये क्या करता है, ये डिफरेंट डिफरेंट दुकानों से जाके सामान उठा के आप लोगों के लिए पहुंचाता है आपके घर तक। और यही ऐप को यूज कर रही थी एक लड़की, इंडिया की लड़की है, ऑस्ट्रेलिया में रह रही है, और उसका ये कहना था कि चलो देखते हैं कि मैं डोर डैश डिलीवरी करके एक दिन में कितने रुपए कमा सकती हूँ। तो उसने बहुत सारी चीजें डिलीवर करी और सिर्फ 4 घंटे काम किया, और 4 घंटे काम करके उसने कमाए 120 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और 120 ऑस्ट्रेलियन डॉलर को अगर मैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर दूं तो वो बन जाएंगे, देखो आप एक काम करो गूगल खोल भी सकते हो, बट अगर ड्राइव कर रहे हो ना तो गूगल खोलने की जरूरत नहीं है, मैं ही आपको बता देता हूँ। 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज इक्वल टू समथिंग अराउंड 64-65 रुपीज, और उसने कमाए थे 120 डॉलर, मतलब करीब करीब 8,300 रुपए के आसपास उसने एक दिन में कमाए हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे काम करके। तो अगर ऐसा कुछ सिस्टम इंडिया में आ जाए मज़ा नहीं आ जाएगा, लाइक अच्छा लगेगा काफ़ी कि हाँ हम लोग भी कमा सकते हैं इतना सारा पैसा, और फिर उसके बाद लोगों की प्रॉब्लम्स मिट जाएगी। बट इंडिया की अपनी प्रॉब्लम्स अलग से है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी। तो आप लोग बताइए क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और हाँ, अभी तो ये बोला गया है कि फ्यूल सेव करो, बट लोग मान नहीं रहे हैं। तो फिर इसके ऊपर एक वीडियो आई है जो कि है फ्रॉम न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड की जो ये वीडियो है, करेंगे इसके बारे में बात, क्योंकि वहाँ पर फ्यूल के प्राइजेस कितने पहुँच गए हैं ये बता रही है एक इंडियन लेडी। क्या है पूरा मामला बताऊँगा आप सभी को मगर इस गाने के बाद।

0: आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा हेलमेट ही मांग लिया।
1: अब हम स्कूटी कैसे चलाएंगे।

0: बॉयफ्रेंड हूं इसलिए गुलाम हूं।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

अभी संडे को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि फ्यूल सेव करो, कोशिश करो कि कारपूल करो, मतलब बहुत ओल्ड टोटल उन्होंने ये कहना चाहा कि देखो भाई आप लोग जितना हो सके उतना फ्यूल बचाओ क्योंकि फ्यूल की किल्लत चल रही है। वैसे तो अभी 60 डेज का है, बट स्टिल उन्होंने बोला इन द वर्स्ट केस सिनेरियो हम लोगों के पास रिजर्व बचा रहे, इसलिए आप लोग थोड़ा सा कंजर्व करो उसको। बट अभी लोग ना मान नहीं रहे हैं और सब कहते हैं मेरे अकेले से करने से क्या हो जाएगा, सबको करना पड़ेगा एक साथ। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और जो मैं अभी आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ वो ये कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर अभी फ्यूल के रेट्स बड़े नहीं हैं। इनफैक्ट क्रूड ऑयल आप सभी को पता है $125 प्रति बैरल पहुँच चुका है उसका प्राइस। और जब बात करें फ्यूल प्राइजेस की तो एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि है फ्रॉम न्यूजीलैंड, और ये वीडियो दिखा रही है कि न्यूजीलैंड में चलता है न्यूजीलैंड डॉलर चलता है, तो न्यूजीलैंड डॉलर के हिसाब से वहाँ पर एक लीटर डीजल 2.89 न्यूजीलैंड डॉलर का मिल रहा है। अब ये 2.89 न्यूजीलैंड डॉलर अगर आप इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो बता दूँ आपको पहले कि न्यूजीलैंड का एक डॉलर इंडिया के 56 रुपये या 57 रुपये के आसपास है, और अगर इसको आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे 2.89 को तो वो पड़ेगा आपको 164 रुपीज़, यानी कि डीजल 164 रुपये का मिल रहा है इस टाइम, वो भी न्यूजीलैंड में। तो आई गेस वी आर प्रिविलेज्ड कि अभी तक यहाँ पर रेट नहीं बढ़े हैं, और अगर कल को रेट बढ़ जाएंगे फिर उसके बाद पब्लिक और अपोजिशन सरकार को घेरेगी, नो डाउट वो तो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, बट पिसेगा कौन? रियलिटी बताऊँ, कॉमन मैन में भी जो लोअर मिडिल क्लास है वो, और साथ ही साथ जो बिल्कुल BPL है मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल है, वो लोग पिसेंगे। तो इसके बारे में ज़रा आप लोग सोचिए और ट्राई टू कंजर्व सम फ्यूल, और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए। वापस अगर और भी बातें करते हैं, और हाँ 12वीं के बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट आए हैं तो फरीदाबाद ने कैसा परफॉर्म किया, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM कुछ हक्के।
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हक्के।

कल आए हैं 12वीं के रिजल्ट, और उनके रिजल्ट के बाद जब मेरे को टॉपर्स की लिस्ट पता लगी और वो भी पता चली अपनी फैमिली के थ्रू मुझे पता चला कि भाई आज भी सुनने को मिल सकता है, चाहे आपने कितने ही साल कर लिए हो, मतलब 12वीं पास करे हुए कितने ही साल हो गए हो आपके, आपके पेरेंट्स मौका नहीं ढूंढेंगे, मतलब मौका ढूंढेंगे कि आप लोगों को सुना सकें। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और जो मैं अभी बात बोल रहा हूँ वो ये है कि जितने भी बच्चों ने टॉप किया है कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, बट थैंक यू सो मच आपकी वजह से मुझे फिर से सुनने को मिला घर में कि देख देख देख ये बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। और बता दूँ आपको अभी लास्ट ईयर से इस साल हरियाणा में अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल 91% लोग पास हो गए थे 12th में, बट इस बार ये चीज़ गिर गई है नीचे, 85.73% लोग ही पास हुए हैं, बच्चे पास हुए हैं। बट जितने भी बच्चे अगर मुझे सुन रहे हैं, कोई पेरेंट अगर मुझे सुन रहा है जिसके बच्चे अगर फेल हो गए हैं या फिर कम मार्क्स आए हैं, तो प्लीज़ डांट के कुछ नहीं होने वाला, एक और चांस दो उनको, शायद वो लोग अपने आप को प्रूव कर दें। और अगर क्या पता उनका पढ़ाई में मन ना लगता हो, और अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो देखिए इतना तो पढ़ना पड़ेगा कि आपको पास होना है, और उसके साथ साथ आप अपनी दूसरी हॉबी सर्च कीजिए और उसमें अपना फ्यूचर बनाइए और उसमें अपना करियर बनाइए। आजकल तो एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, तो पढ़ने के अलावा भी ऑप्शंस हैं, तो उनको भी आप ज़रा दिल लगा के मेहनत करके करते रहिए, और क्या पता आप लोग अपना नाम रोशन कर दो और अपने फैमिली का भी नाम रोशन कर दो। इसी के साथ साथ रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने चला रहा हूँ। वापस आकर बात करते हैं एसी की, क्योंकि ना कुछ किस्से आए थे अभी एसी फटने के, तो उसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कैसे आप लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हो, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

कहते हैं सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, और इसी मूल पर भाटिया सेवक समाज चैरिटेबल हॉस्पिटल पिछले 65 वर्षों से लाखों फरीदाबाद वासियों को अपनी सेवाएं दे रहा है। NIT2 स्थित भाटिया सेवक समाज चैरिटेबल हॉस्पिटल में आई हॉस्पिटल, डेंटल, फिजियोथेरेपी, गायनेकोलॉजिस्ट जैसी क्लिनिकल सर्विसेज भी उपलब्ध है। यही नहीं, भाटिया सेवक समाज पूरे फरीदाबाद को अफोर्डेबल दामों पे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की सर्विसेज भी देता है। इस संस्था का मिशन है आने वाले वक्त में फरीदाबाद वासियों को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी मुहैया करवाएं, ताकि बीमारियों का इलाज सब तक आसानी से पहुंच पाए। वहां बन रहे हॉस्पिटल में आप भी अपना आर्थिक योगदान दे सकते हैं। आप अपना आर्थिक योगदान यूनियन बैंक के अकाउंट नंबर 3544-02-01-00-00-515 पर जमा करा सकते हैं, जिसका IFSC कोड है UBIN 0535443। आपकी दी गई छोटी सी सहयोग राशि भी लाखों लोगों के लिए बन रहे हॉस्पिटल में बड़ी मदद होगी। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें मोहन सिंह भाटिया 9899498909।

आप लोगों ने लास्ट ईयर भी सुना होगा कि लोगों के एसी फट रहे हैं और आउटडोर यूनिट फट रहा है तो इंडोर यूनिट भी फट जा रहा है और इसके पीछे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं और इस साल भी बहुत सारे केसेस हम लोगों को सुनने को मिल गए हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड जो मैं ये बात बोल रहा हूं, आप लोग बिल्कुल इत्तेफाक रखते होंगे इस बात से कि देखो अगर एसी को फटने से बचाना है तो आप लोगों को इसकी नियमित सर्विस करवानी पड़ेगी। और ऐसे केसेस जब भी आते हैं तो दिल दहल जाता है कि हमारे भी घर में एसी लग रहा है और हमारे घर में छोटे बच्चे भी हैं एंड बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, दर्द होता है, डर लगता है कि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। तो टचवुड, किसी के साथ भगवान ना करे ऐसा कभी हो, बट आप लोग इन सबको प्रिवेंट कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि खुद से एसी टेक्नीशियन नहीं बनना है हम लोगों को, क्योंकि देखो होता है काफ़ी बार लोग 300-500 रुपये बचाने के लिए खुद से ही घर पे एसी सर्विस करने लग जाते हैं। ऑल दो बहुत सारे लोगों के घर की एसी की सर्विस हो चुकी होगी, बट मैं जो बोल रहा हूँ ना कि कुछ लोग खुद से ही एसी टेक्नीशियन बन जाते हैं और अपने आप ही एसी को सर्विस कर डालते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक टेक्नीशियन को घर पे बुलाइए और उनसे सर्विस करवाइए, क्योंकि अगर सर्विस के टाइम वो जब सर्विस करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि इसमें कोई और दिक्कत तो नहीं है कहीं, क्या पता कोई ब्लॉकेज हो रही हो, क्या पता उसमें गैस की इशू हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिए कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और आउटडोर यूनिट को भी बचा के रखें और इंडोर यूनिट पर भी ध्यान रखें और साथ में स्टेबलाइजर ज़रूर लगवाइएगा, क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन, यू नो गर्मियाँ हैं और वोल्टेज फ्लक्चुएशन होना तो आम बात है। तो इसी के साथ साथ बस मुझे दीजिए इजाज़त, अरे नहीं जा रहा कहीं पर, बस चाय पी के आ रहा हूँ, बस बाहर का यूँ गए और यूँ आया। फिलहाल आप सभी के लिए गाना लगा के जा रहा हूँ।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

एक सवाल मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, जितने भी लोग फरीदाबाद में मुझे सुन रहे हैं, तो क्या आज आप सभी के फोन में सायरन बजा? नहीं बजा क्या? क्यों? बजना चाहिए था। और अगर आपके फोन में नहीं बजा तो फिर आपके पड़ोस वालों के फोन में बजा होगा, किसी ना किसी के फोन में तो जरूर बजा होगा। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। जैसे ही सुबह 9 बजे सायरन बजाना तो मुझे लगा ये क्या हो गया। और बता दूं आपको, ये जो सायरन है ये बेसिकली एक मॉक ड्रिल के लिए था, और आज सेक्टर 12 में भी हुआ, और साथ ही साथ ओल्ड अंडरपास पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन का एक मॉक ड्रिल हुआ था। और इसके साथ साथ बता दूं आप सभी को कि ये सब NDMA के द्वारा किया जाता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और वो इसलिए किया जाता ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में हम लोग सब लोगों को सुरक्षित निकाल सके। तो ये एक मॉक ड्रिल था जो कि आज हुआ है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, और ये होनी भी चाहिए। क्योंकि एक बार अपने आप से सवाल पूछिए, और एक बार पूछिए कि आप में से कितने लोगों को एक सिंपल सा फायर एक्सटिंग्विशर चलाना आता है। बहुत कम लोगों को आता है। तो प्लीज़, ऐसा लगता है कि बड़ा ईजी होगा, पिन खींचा, नोजल दबाया और हो जाएगा। ईजी है, बट उसकी ट्रेनिंग भी लेना ज़रूरी है। मॉक ड्रिल एक बार अटेंड करोगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और इसके अलावा इंसान को, मेरे ख्याल से तो हर इंसान को CPR देना आना चाहिए, जो छाती पे हाथ रखकर जब दबाते हैं उसे CPR कहते हैं। और इस चीज़ के ऊपर भी आप लोगों को ट्रेनिंग लेनी चाहिए, सबको, इवन मेडिकल प्रोफेशनल्स को तो आता ही है, बट उनको बाकी लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। ये मेरी अपनी थॉट है, तो आप लोगों को ये थॉट कैसा लगा बता सकते हैं हमें। 9654896896 ये हमारा नंबर है, इसके नंबर याद नहीं हुआ तो डोंट वरी, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे रेडियो महारानी के नाम से। फिलहाल आप सभी के लिए गाना ओनली ऑन 89.6 FM, कुछ हटके।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: इंटरनेट मीडिया अकाउंट या मोबाइल फोन पे पैसे की मांग पर भरोसा ना करें। किसी भी मैसेंजर ऐप पर अनजान वीडियो कॉल से सावधान रहें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

0: मजबूती से इसे सफल बनाए, हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: चल अर्जुन, शुरू आजा।
2: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
1: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
2: शायरी पे ध्यान लगाओ।
1: इरशाद,
2: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
1: मेरा नहीं, तुम्हारा ही होगा,
2: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है, फिर भी अपना रुतबा है यारो।
1: ये बात तो सही है।
2: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
1: कैसे कैसे?
2: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
1: अरे यार, वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
2: सुनो सुनो, है

स्वागत है जी सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आपके काफी सारे दोस्त ऐसे होंगे जो आप लोगों को अभी बोल रहे होंगे, या फिर हो सकता है आज ही आपके ऑफिस में किसी ना किसी दोस्त ने आपको जरूर बोला होगा कि भाई देख गर्मियां आ रही है, आ ही चुकी है, और हम लोग चलते हैं कहीं घूमने। और फिर घूमने के नाम पे उनको सिर्फ दो ही तीन जगह मिलती है, वो है मनाली, कुल्लू, हिमाचल और साथ में उत्तराखंड के कुछ दो तीन प्लेसेस और बोल देंगे ऋषिकेश चल लेते हैं, पास ही तो है। तो आप लोग क्या बोलते हैं उनको? देखो सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, वो इंसान ये देखता है कि मेरी जेब में कितने पैसे पड़े हैं, फिर उसके बाद देखता है कि साथ में जा कौन कौन रहा है, क्योंकि काफ़ी बार ग्रुप में एक इंसान ऐसा ज़रूर होता है जिसके जाने से पूरी ट्रिप ख़राब हो जाती है। और अगर आपके ग्रुप में ऐसा कोई इंसान आपको नहीं दिखाई दे रहा तो समझ लो वो इंसान आप ही हो, जिसकी वजह से सबका मूड ख़राब हो सकता है। तो प्लीज़ मैं सभी से बोलना चाहूँगा कि प्लान बनाओ, अच्छे से बनाओ, कहीं घूमने जाओ, शांति से जाओ, और कोशिश करना कि अगर नेचर में जा रहे हो तो नेचर को गंदा नहीं करना है हम लोगों को। प्लास्टिक कोई भी पोल्यूशन नहीं फैलाना, प्लास्टिक पोल्यूशन नहीं फैलाना, कुछ भी नहीं, नो गंदगी। जितनी गंदगी लेके जा रहे हो, जितना खाने का सामान लेके जा रहे हो, प्लीज़ इंश्योर दैट कि जितने प्लास्टिक के पैकेट्स हैं वो सब आप पहाड़ों से वापस लेकर आओगे। और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस टाइम ना सोलो राइडिंग करते हैं, सोलो ट्रिप पे जाते हैं। तो जितने भी लोग सोलो ट्रिप पे जाने की सोच रहे हैं तो ट्राई कीजिएगा एक ऑथराइज्ड, मतलब जो ट्रिप पे घुमाने जाते हैं ना, उन लोगों से ही कॉन्टैक्ट करें। और फंसना मत कभी भी, क्योंकि अभी रिसेंटली एक इंसान के साथ लाखों की ठगी हुई है, वो भी फरीदाबाद में, और जस्ट फॉर केदारनाथ, मतलब केदारनाथ घूमने जाना था उन्हें। क्या है पूरा मामला बताऊंगा आप सभी को मगर थोड़ी देर बाद। रेडियो महारानी 89.6 FM सुनते रहिए। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

अभी रिसेंटली फरीदाबाद में एक फैमिली को जाना था केदारनाथ, और उन्होंने सोचा कि केदारनाथ हम लोग पैदल नहीं चल पाएंगे, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग हेलीकॉप्टर ही बुक कर लें। और जैसे ही उन्होंने हेलीकॉप्टर बुक करने के लिए इंटरनेट खोला तो उनको बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स मिले, और फिर जैसे ही उन्होंने उनको कॉन्टैक्ट किया तो हो गई उनके साथ ठगी। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। देखो, आस्था एक ऐसी चीज़ है जिसके विश्वास, मतलब हम लोग सब विश्वास पर ही टिके हैं। हम लोग विश्वास करके जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि हाँ, हम लोग इस जगह पर जा रहे हैं तो हमारे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती। बट ऐसा सोचना भी मेरे ख्याल से गलत है। और अभी रिसेंटली फरीदाबाद में एक फैमिली के साथ जो हुआ है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक्चुअली मैं उनको जाना था केदारनाथ, और केदारनाथ में उन्होंने सोचा कि हेलीकॉप्टर बुक कर लेते हैं। जब उन्होंने हेलीकॉप्टर बुक किया तो उसके हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर उन्होंने बोला कि कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब इन्होंने करीब करीब 1,00,000 ट्रांसफ़र कर दिए। फिर उसके बाद टोटल अमाउंट जो ट्रांसफ़र किया वो था 1,87,619 रुपये। इतने रुपए जब ट्रांसफ़र कर दिए थे, फिर उसके बाद इनको बोला गया कि आप ना इंश्योरेंस भी करा लो अपना। इंश्योरेंस के नाम पे 60,000 रुपये और मांगे जा रहे थे, तो इनको डाउट हुआ। दे वर लाइक के इतने पैसे दे चुके आप, 60,000 रुपये और अभी दे दें इंश्योरेंस के, तो फिर मुझे लगता है ये गलत है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हमारे काम करो, हमारे सारे पैसे वापस कर दो, हमें नहीं जाना हेलीकॉप्टर में। बट उन्होंने जैसे ही ये बोला वैसे ही हुआ ये कि उन्होंने बोला कि हम लोग आपको सारे पैसे वापस कर देंगे। बट द थिंग इज वो पैसे वापस नहीं आए। तो मैं सभी से ये बोलना चाहूँगा कि जब भी आप ऐसी कोई भी बुकिंग करते हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके साथ कोई भी ऐसी ठगी ना हो। पैसे अगर किसी को दे रहे हैं तो ध्यान से दीजिए, ये सोच के दीजिए कि हाँ वो इंसान आपको जानता है, या फिर आप उसको जानते हो, या फिर आपका कोई दोस्त उसको अच्छे से जानता है, तभी आप पैसे ट्रांसफ़र करना, वरना नहीं। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 FM सुनते जाइए। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।
2: Yes, I have a superb track for you actually, which is critical to your husband and you also. So it's a song from Basha, dedicated to one and only A.R. Rahman. So here it is, the new track.

0: કેમ છે, કેમ છો, કેમ છો, મજામાં ને? તો અત્યારે મારી પાસે સાથે કોણ છે નેક્સ્ટ? ભાભીજી
1: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
2: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
1: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित।

क्या आप लोग भी गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हैं? तो मैं आपको एक हैक देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग हैक है ये और बहुत इजी है, इसमें ज्यादा आपके पैसे खर्च नहीं होने वाले। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। अब देखो आपको करना क्या, अगर आपका रूम छोटा है तो ये अच्छे से वर्क कर जाएगा। अब आपको करना क्या है, एक छोटा सा बोल लेना है, मतलब वो डोंगा होता है ना उससे थोड़ा सा बड़ा बोल ले सकते हो, बढ़िया है, अगर डोंगा है तो भी चलेगा। तो उसको आपको पूरा बर्फ से भर देना है, बिल्कुल बर्फ का पहाड़ बना देना है उसके अंदर। और जैसे ही आप ये करोगे उसके बाद आपको इस बोल को पंखे के सामने रखना है। हाँ, पंखे के सामने, मतलब वो सीलिंग फैन नहीं, नो, सीलिंग फैन के ऊपर पास भी रख सकते हो, बट फिर आपको थोड़ी सी हाइट बढ़ानी पड़ेगी अपने टेबल की। खैर, आपको एक बोल को फैन के पास रखना है और इससे क्या होगा, आपका रूम इंस्टेंटली कूलर वाली फील देगा। मतलब छोटे रूम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे 10x10 का अगर आपका रूम है तो आपका रूम ठंडा जल्दी हो जाएगा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ फैन से ही ठंडा हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा, जितनी भी गर्मी होगी आसपास वो बोल अपने अंदर समाता रहेगा, और फिर जैसी बर्फ पिघलते रहेगी तो रूम की गर्मी भी धीरे धीरे धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तो ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ कोशिश कीजिएगा कि गर्मी में अगर बाहर निकल रहे हैं तो प्लीज़ पानी पी के ज़रूर निकलिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन किसी को भी किसी भी वक्त हो सकता है। और आने वाले कुछ दिन कोई भी बारिश नहीं है ऐसा मौसम विभाग का कहना है, बट क्या पता सुपर एलिनो चल रहा है, हो सकता है अनइवन बारिश हो जाए, क्योंकि सुपर एलिनो में ऐसा ही होता है। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए गाना 89.6 FM पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
1: और इस बड़ी जिंदगी को छोटी ना बनाए, शराब पीकर गाड़ी ना चलाए।
2: जिंदगी

पंजाब और मुंबई का मैच चल रहा है और मैच को भी जरा साइड में रख दो, मैं एक बात बोलूंगा, अगर मुंबई आज जीत भी गई कोई फर्क नहीं है क्योंकि उनके पास चांसेस ही नहीं है अब प्लेऑफ्स में जाने के। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। देखो पंजाब है भी चौथे नंबर पर और मुंबई है भी नवे नंबर पर, तो नवी मुंबई मतलब नाइन्थ नंबर पर मुंबई है और वो अब कोई चांस नहीं है उनका कि वो प्लेऑफ्स में जा सके क्योंकि उन्होंने खेले टोटल 11 मैच, आज 12वां मैच है उनका, 3 जीते हैं 8 हारे हैं और अगर आज एक जीत जाएं तो 4 हो जाएंगे, मैक्सिमम वो 6 जीत जाएंगे, बट 6 जीत कर वो प्लेऑफ्स में नहीं जा सकते। तो बता दूं आपको पहले नंबर पर है बैंगलोर, दूसरे पर गुजरात, तीसरे पर हैदराबाद, चौथे पर पंजाब और पांचवें पर है सबकी फेवरेट चेन्नई, थाला फॉर अ रीज़न, पांचवें पर है पटवो, सातवें पर नहीं है, सातवें पर है दिल्ली और दिल्ली के पास अभी थोड़े बहुत चांसेस है कि वो प्लेऑफ में चली जाएगी अगर वो अपने आने वाले 2 मैचेस लगातार जीत जाए और सनराइजर्स अपने आने वाले 2 मैचेस लगातार हार जाए, बस यही एक तरीका है कि दिल्ली पहुंच सकती है प्लेऑफ में। बट मैं आपको बता दूं 8वें नंबर पर है कोलकाता और 10वें नंबर पर है इस टाइम लखनऊ, और लखनऊ का तो मुझे समझ ही नहीं आया, इतने बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी हैं इनके पास बट स्टिल ये लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। खैर खिलाड़ी तो अच्छे दिल्ली के पास भी है बट दिल्ली भी नहीं कुछ कर पा रही है, तो ये हो क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलिए जो भी होगा वो मैच देखकर पता लग जाएगा, अभी मैं भी जरा मैच ट्यून इन करता हूँ, आप लोग भी जरा रेडियो महारानी पर गाना सुनिए, आप लोगों के लिए ये गाना 89.6 FM रेडियो महारानी पर।

0: बॉयफ्रेंड हूं इसलिए गुलाम हूं।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स OTP सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहे तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।

कभी कभी मन करता है कि बारिश आ जाए, खूब सारी बारिश आ जाए, बारिश आते ही रहे और फिर बारिश रुके ही ना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो गर्मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है एंड आई गेस किसी को भी पसंद नहीं होगी, बस एक आम के लिए पसंद होगी क्योंकि आम आते ही गर्मी में है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड देखो गर्मी चाहे कैसी भी हो झेली नहीं जाती, क्योंकि सर्दी में एक बार को आप लोग सड़क किनारे आग जला सकते हो जो कि गलत है, बट स्टिल आप आग जला के उस गर्मी सर्दी को दूर कर सकते हो, बट आप गर्मी में क्या कर पाओगे? आप उस इंसान के बारे में सोचिए जो सड़क किनारे रहता है, जो एक झुग्गी डाल के रहता है, वो इस गर्मी में क्या करेगा वो इंसान? तो ये सब चीज़ें भी सोचने वाली होती है, बट क्या करें अभी कुछ नहीं कर सकते। और हाँ देखो टाइम हो गया मेरा यहाँ से जाने का, तो जाते जाते मैं आप सभी से सिर्फ एक ही गुजारिश करूँगा जो कि अक्सर करता हूँ, और वो गुजारिश यही है कि अपने घर के आसपास कूड़ा ना फैलाएं, और हो सके तो पक्षियों के लिए पानी भी रख दीजिए, और अपनी गाड़ी में एक चिल्ड बोतल, बर्फ जमी हुई बोतल रख के चला कीजिए, और रास्ते में अगर कोई भी आपसे कुछ भी भीख मांगता है तो आप उसको बोतल दे सकते हैं पानी की, वो भी आपको शुक्रिया अदा करेगा। तो चलिए इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलूंगा आप सभी से फिर से कल शाम 5 से 8, और कल तो वैसे भी फ्राइडे है ब्रो, तो फ्राइडे को होने वाली खूब सारी मस्ती। अभी फिलहाल आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ वापस आएगी गीत वे देश वाजियां, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा, सी यू टुमारो ओनली ऑन 89.6 FM कुछ हटके।

0: watch more, log on to www.erosnow.com.
1: आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा हेलमेट ही मांग लिया।
2: अब हम स्कूटी कैसे चलाएंगे?

माची सटक सटक बम तेरा गुते खाए, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, बॉडी तेरी मक्खन जैसे, खाने में बस तू बटर खाए। कमॉन बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट, खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

तेरे अंग अंग तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़, I am the baddest motherfucker।

0: व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अभी अभी आपने सुना है ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक, प्यार आता है। और सच बताऊं तो प्यार की सबसे प्यारी बात यही है जो बिना बुलाए आ ही जाता है, कभी किसी की हंसी में, कभी किसी की याद में, और कभी कभी किसी अजनबी की आंखों में बस आ जाता है। रेडियो महारानी से मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, और शो ले आई हूँ आपके लिए इश्क बाजियां। और ये शो उन दिलों के लिए है जिनमें अब भी मोहब्बत की गूंज बाकी है। और आज का जो ये पहला आर है वो स्पेशल है इश्क शायराना, जहाँ मैं बात करती हूँ उन शायरों की जिन्होंने मोहब्बत को, जुदाई को और रिश्तों की उलझनों को इतने खूबसूरत अल्फाज दिए कि वो हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन गए। और आज की रात मैं आपको लेकर चलूंगी फैज अहमद फैज की दुनिया में, जिनकी शायरी मोहब्बत में भी है और हकीकत में भी, वो अल्फाज जो आज भी उतने ही सच्चे लगते हैं जितने सालों पहले लिखे गए थे। और सोचिए ये बातें आज की लाइफ में कितनी जुड़ी हुई हैं। हमारी जेनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है ना, दिल में बहुत कुछ होता है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। व्हाट्सएप पर ब्लू टिक आ जाता है, इंस्टा पर ऑनलाइन दिखते हैं, पर दिल की बात टाइप करने की हिम्मत नहीं होती। यहाँ पर शायर हमारी मदद करते हैं क्योंकि वो वही सब कह जाते हैं जो हम महसूस करते हैं। और आज की रात मैं आपको लेके चलूंगी फैज अहमद फैज की दुनिया में, जहाँ मोहब्बत भी है, तड़प भी है और हकीकत भी। लेकिन शुरुआत करते हैं इस गाने से जो अपने शब्दों में यही कहता है, चाहे हालात जैसे भी हो, जब दिल किसी पे आ जाता है तो बस एक ही ऐसा।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: सोशल मीडिया पे प्राइवेसी टाइट रखो, अपनी लाइफ में डॉक्यूमेंट्री मत बनाओ, और हाँ, लाइफ में ड्रामा का फोकस ज्यादा रखो।
3: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
4: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
3: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
5: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
0: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

गाना है फ्रॉम द मूवी रहना है तेरे दिल में, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और कभी नोटिस किया है, आजकल के रिश्तों में सब कुछ बहुत फास्ट हो गया है, जल्दी प्यार, जल्दी टूटना, जल्दी आगे बढ़ जाना, लेकिन दिल वो आज भी पुराने जमाने की तरह स्लो है। उसको आज भी वही दर्द, वही मोहब्बत उतनी ही गहराई से महसूस होती है, और जब दिल बोलना चाहता है तो अल्फाज ढूंढ नहीं पाता। तभी तो हमें शायर चाहिए होते हैं, जो हमारे दिल की बात हमारी जबान से पहले कह जाते हैं। और आज इश्क शायराना में आप सुनने वाले हैं फैज अहमद फैज को। फैज की शायरी मोहब्बत भी है और हकीकत भी। एक तरफ वो कहते हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। सोचो ये लाइन आज के टाइम में कितनी रिलेटेबल है, क्योंकि आजकल हम सबके पास अपने अपने स्ट्रगल्स हैं, करियर का प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, सोशल मीडिया के कंपैरिजन वाली लाइफ, इन सब के बीच प्यार अक्सर पीछे छूट जाता है। दिल तो चाहता है सब कुछ पहले जैसा हो, लेकिन जिंदगी बदल चुकी होती है। और फिर फैज हमें एक और तस्वीर दिखाते हैं, गुलों में रंग भरे, बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। मतलब हाँ, दर्द है, हकीकत है, लेकिन मोहब्बत फिर भी जरूरी है, क्योंकि वही तो है हमारी ड्राई जिंदगी को फिर से रंग भरने के लिए। तो दोस्तों, आज अगर आप किसी रिश्ते में हो या किसी से दूर हो चुके हो, बस इतना याद रखना, मोहब्बत का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है। कभी कभी मोहब्बत वो यादें होती हैं जो आपकी थकी हुई शाम को मुस्कुराहट दे जाती हैं, और यही तो है असली इश्क शायराना, दिल की बात शायर के अल्फाज और हमारी जिंदगी का कनेक्शन। और अब यहाँ पर सुनते हैं बहुत ही बेहतरीन सा गाना। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली की।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन हम?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी।

गाना है फिल्म परम सुंदरी से और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत। और ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत सुकून का होता है। जब दिन भर के भागदौड़ से घर पर लौटते हैं तो एक अलग सी खुशी महसूस होती है। दिन भर की जो थकान है वो सब दूर भाग जाती है। और पता है मेरे साथ भी यही है। कभी कभी इस टाइम की आरजे होने का अच्छा हिस्सा यही लगता है कि इस वक्त आप और मैं दोनों ही अपनी अपनी दुनिया से थोड़ा सा ब्रेक लेकर बस दिल की बातें कर रहे होते हैं। दिन भर की भाग दौड़, मीटिंग्स, डेडलाइंस, फैमिली टेंशन्स सबको पीछे छोड़कर ये कुछ पल सिर्फ आपके और मेरे होते हैं। अब असली सवाल ये है कि इन पलों में हम सबसे ज्यादा किसे याद करते हैं? ज्यादातर वही ना जिसके बिना अधूरे लगते हैं, यानी मोहब्बत। लेकिन फैज कहते हैं मोहब्बत ही जिंदगी का सब कुछ नहीं है। चलिए उनके शेर से आपको समझाती हूँ। वो कहते हैं कि और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। आजकल हम सोचते हैं कि प्यार नहीं है तो जिंदगी अधूरी है, लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी की लड़ाइयाँ, दर्द और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी कभी मोहब्बत से भी बड़ी हो जाती हैं। और फैज यही हमें याद दिलाते हैं कि प्यार जरूरी है लेकिन जिंदगी उससे कहीं बड़ी है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि मोहब्बत आपके लिए सब कुछ है तो जरा ठहर जाइए, जरा रुक जाइए। जिंदगी की किताब में मोहब्बत बस एक चैप्टर है, पूरी कहानी नहीं। और यही है इश्क शायराना, जहाँ शायर हमें मोहब्बत के साथ साथ जिंदगी का सच भी सिखाते हैं। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत।

0: सफर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
3: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
4: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

वैसे ही आशिकी कई बार बगावत भी कर जाती है। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और बहुत ही खास सा सेगमेंट है इश्क शायराना। देखिए, मोहब्बत पर बात हो चुकी है, अब बात करेंगे कुछ यादों पर, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब यादें शुरू हो जाती हैं, किसी की भी यादें। दिन भर की आवाजें, शोर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब जैसे कहीं गायब हो जाते हैं और तभी दिल में वो पुरानी सी यादें दस्तक दे जाती हैं। कभी किसी की मुस्कान की और कभी किसी की नजर की, ऐसे ही पलों को अल्फाज दिए फैज ने। इन्होंने कहा है कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीरानों में चुपके से बाहर आई, जैसे सहमी हुई रूठी हुई सहर आए, जैसे वीरानों में हल्के से हवा आ जाए। क्या कमाल का तसव्वुर है। यादों को उन्होंने बहार, सुबह और हवा से कंपेयर किया है, मतलब कोई शख्स अगर याद भी आ जाए तो दिल की वीरानी भी रंगों से भर उठती है। आज की लाइफ में ये एहसास उतना ही सच है। कितनी बार होता है ना, दिन भर सब कुछ ठीक चलता है लेकिन रात को अचानक किसी की याद आकर सब कुछ बदल देती है, जैसे दिल थकान भूलकर फिर से मुस्कुरा उठता है। फैज हमें यही सिखाते हैं कि मोहब्बत का सबसे बड़ा जादू यही है कि वो दूर रहकर भी, याद बनकर भी हमारी जिंदगी में रौनक भर सकता है। तो दोस्तों, आज अगर रात आपको किसी की याद आ रही है तो बस मुस्कुराकर उसे दिल में जगा दीजिए, क्योंकि मोहब्बत हमेशा पास होकर ही नहीं, कभी कभी बस एक याद बनकर भी बहुत गहरी हो जाती है। और यही है इश्क शायराना। वक्त है

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: कब
1: सोनू निगम की आवाज में है ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द मूवी परम सुंदरी। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और फैज की बातें चल रही हैं जो हमारी जिंदगी की कुछ सिचुएशन से बहुत ज्यादा कनेक्ट होती है, इनकी कुछ ऐसी शायरी, इनके कुछ ऐसे शेर। और अब एक और सिचुएशन है, ये सिचुएशन है कि जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है जब हम किसी से बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन दिल भरा होता है, लेकिन जब वो शख्स सामने आता है तो बस खामोशी रह जाती है, लव्स दिल में ही अटक जाते हैं। इसे खामोशी को अल्फाज दिए फैज ने, और देखिए इनका ये शेर जो है वो कितना खूबसूरत है और कितना ज्यादा कनेक्ट होता है इस सिचुएशन से, कि दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। क्या कमाल की तसल्ली दे दी है ना इस शेर ने, मतलब चाहे हालात कितने ही मुश्किल से भरे क्यों ना हो लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं है, गम की शाम कितनी ही लंबी क्यों ना लगे आखिर वो खत्म होनी ही है और उस शाम के बाद एक नई सुबह आनी है। और आज की जिंदगी में ये शेर और भी ज्यादा गहरा हो जाता है, हम सब कभी ना कभी किसी मुश्किल दौर से गुजरते हैं, किसी रिश्ते का टूटना, किसी चीज का प्रेशर, फैमिली की बहुत सारी टेंशन्स, और उस वक्त लगता है कि शायद यही दर्द हमारी पूरी कहानी है, लेकिन फैज हमें याद दिलाते हैं ना ये सिर्फ एक शाम है और ये शाम ढल जाएगी क्योंकि शाम के बाद एक नई सुबह आनी बाकी है। तो यार अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा ही चल रहा हो ना, एक लंबी सी शाम चल रही हो, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, सुबह जरूर आएगी। और यही आपको सिखाता है इश्क शायराना। फिलहाल वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

वैसे इस गाने में आप किशोर दा की आवाज को फील कर रहे होंगे, लेकिन ये जो आवाज है ये एआई की आवाज है, किशोर दा की आवाज नहीं है। लेकिन खैर, जहां एआई के कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं वहां कुछ फायदे भी हैं कि हम इन नए गानों को उस पुराने एहसास में जी पा रहे हैं। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और अब सेगमेंट जो शुरू होने वाला है रेट्रो इश्क, जहाँ ऐसी ही एक मोहब्बत की कहानी के बारे में बात करेंगे जिसकी कहानी भले ही पूरी नहीं हुई हो लेकिन उस मोहब्बत ने कमाल किया है। तो चलिए रेट्रो इश्क में आज फिर चलते हैं, उसी मोहब्बत की गहराई को महसूस करते हैं। और ये खूबसूरत सी मोहब्बत है किशोर दा और मधुबाला की, जहाँ हंसी सिर्फ एक मुखौटा थी, अंदर कहीं एक टूटा हुआ इंसान था। कहते हैं ना कि कुछ मोहब्बतें बड़ा शोर मचाती हैं और कुछ चुपचाप किसी दिल के कोने में बस जाती हैं। और आज रेट्रो इश्क में उसी मोहब्बत के बारे में बात होगी जिसे हंसी में लपेटा गया मगर आंसू से सींचा गया, किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है इश्क बाजियां और मैं हूं

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या कहा?

बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और ये गाना है किशोर दा और लता जी की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क के इस खास सेगमेंट में हम आज बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। एक दौर था जब मधुबाला बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मानी जाती थी, मुस्कुराहट उनकी पहचान थी और चेहरे पर एक ऐसा नूर था जैसे पर्दे पर बस चांद उतर आया हो। और दूसरी तरफ थे हमारे किशोर दा, बॉलीवुड का सबसे चुलबुला बिंदास और थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा सा आवाज का जादूगर। जब दोनों पहली बार मिले तो एक स्टार और एक स्टैंड अप सिंगर की मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात मोहब्बत में कैसे बदल गई? दो लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट थे उनको कैसे प्यार हुआ, इसके बारे में बात होगी। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसी हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

रवि साहब की आवाज में है ये गाना और फिल्म हम किसी से कम नहीं जो आई थी 1977 में, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत, और हम बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। दो ऐसे नाम जिनका जिक्र किए बगैर हिंदी सिनेमा के बारे में बात करना शायद बेईमानी है। एक एक्टिंग वर्ल्ड की सुपरस्टार थी तो दूसरा संगीत जगत के बादशाह। इन दोनों को जिंदगी में सब कुछ मिला, लेकिन इनके प्यार की कहानी का जिस तरह से अंत हुआ वो आज भी आपकी आंखें भिगो देगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये दोनों कैसे करीब आए, इनको कैसे मोहब्बत हुई। लोग अक्सर कहते हैं कि मोहब्बत के लिए वक्त चाहिए, पर कुछ मोहब्बतें पहली नजर में ही दिल पर दस्तक दे देती हैं। मधुबाला जो उस वक्त दिलीप साहब की मोहब्बत में थी और अपना दिल जो है वो भी तोड़ चुकी थी, और तभी किशोर दा उनकी जिंदगी में आते हैं एक हंसी का मरहम बनकर। मधुबाला अपने करियर में पीक पर थीं जब उन्हें पता चला कि उनके दिल में छेद है, और वो विदेश चली गई अपना इलाज कराने के लिए। और इस वक्त ये दोनों साथ में थे, यानी कि किशोर दा और मधुबाला साथ में थे, लेकिन जब किशोर दा को उनका पता चलता है तो उस वक्त वो बहुत भावुक हो जाते हैं और उन्हें सीधा शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। और जब कोई इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसके साथ जिंदगी का हर लम्हा बिताने की चाह भी रखता है, फिर चाहे उसमें सुख हो या दुख, ये जानते हुए भी कि मधुबाला की जिंदगी का अंत कभी भी हो सकता है। लेकिन किशोर दा ने हमेशा उनका ख्याल रखा और उनसे शादी करने का फैसला लिया, और उन्हें कभी भी इस फैसले को लेकर पछतावा भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत में थे और मधुबाला के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते थे। इसके बाद क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत रेट्रो इश्क, जो बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है। किशोर दा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं, जहाँ एक ऐसा वक्त आ गया था मधुबाला की जिंदगी में कि किशोर दा ने इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन इससे कुछ समय पहले की बात है, जब इनकी बहुत ही एक सुपरहिट मूवी रही जिसका नाम था चलती का नाम गाड़ी। सेट पर मजाक मस्ती और हंसी के बीच धीरे धीरे दोनों की जिंदगी एक दूसरे में घुलने लगी। और जब मधुबाला की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जहां ये इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन मधुबाला का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। और यहां जब किशोर दा की बात आई तो उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स लगाए इस मोहब्बत को पूरा करने के लिए, और आखिर में उन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया, दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद होता यह है कि किशोर दा की फैमिली मधुबाला को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लेकिन पता है इन दोनों की मोहब्बत की सबसे बड़ी बात क्या थी? इतनी सारी चीजें होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी बातें इनके रिश्ते पर कभी हावी नहीं हुई। देखो यार, हर कोई ये चाहता है कि जब किसी की जिंदगी का कोई नया चैप्टर शुरू हो तो उनकी फैमिली रहे उनके साथ, बड़ों का आशीर्वाद रहे उनके साथ। हालांकि कभी कभी किसी को ये खुशी नहीं मिल पाती क्योंकि उनके परिवार उनसे अलग हो जाते हैं जब वो नए रिश्तों में बन जाते हैं। इनको भी अपनी फैमिलीज को पीछे रखना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया था उसी एफर्ट्स के साथ। और अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली की।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

उनकी हालत जो है वो बीतते दिन बिगड़ती ही जा रही थी। इतना सब चल रहा था इनके साथ, लेकिन किशोरदा की मोहब्बत में जरा भी कमी नहीं आई। जीवन साथी बनने पर लोग कसम खाते हैं कि वो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, और इस बात को किशोरदा ने करके दिखाया। उन्हें पहले से मधुबाला की सिचुएशन के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे शादी की और आखिरी सांस तक उनका ख्याल रखा। ये जो प्यार की कहानी है ना, ये हमें यही सिखाती है कि सुख दुख में अपने साथी के साथ खड़े रहने का मतलब क्या होता है। और आई थिंक आप इनके प्यार की कहानी को समझ ही गए होंगे। एक ऐसा चेहरा जो हमेशा हमें मुस्कुराता दिखा, लेकिन अपनी जिंदगी में कितना कुछ झेल रहा था हमारे किशोरदा। और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी बहुत ही खास सा सेगमेंट लेकर। तब तक आप ये गाना

0: अर्ज करते हैं।
1: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
0: शायरी पे ध्यान लगाओ।
1: इरशाद।
0: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
1: मेरा नहीं, तुम्हारा ही होगा।
0: सबका ये, सब कुछ टूटा फूटा है, फिर भी अपना रुतबा है यारों।
1: ये बात तो सही है।
0: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
1: कैसे कैसे?
0: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
1: अरे यार, वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
0: सुनो सुनो, हेलो।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: अपनी वाइफ को हैकर्स और रोड के माइकल शुमाकर वर्नबी से बचा के रखो। हैकर्स ऐसे फिशिंग करते हैं जैसे हम फ्री समोसे का पोस्टर देख के दौड़ते हैं, पर तुम शेड लिंक मत खोलना वरना तुम्हारा डेटा उड़ जाएगा इतनी स्पीड से कि गूगल मैप्स भी बोल देगा। रिकैलकुलेटिंग लाइफ, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो, पासवर्ड 123 मत लिखना, ये देख के तो हैकर भी बोल देगा भाई इतना आसान क्या। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, एप्स अपडेटेड रखो वरना स्कैमर्स पार्टी मनाकर तुम्हारे ही अकाउंट में नाचने लगेंगे।
3: कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

गाना है फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, और यहाँ पर मैं सेगमेंट ले आई हूँ दिल दिया गल्ला। आपके दिलों की बात आपके दिलों तक पहुंचानी है, और आज का टॉपिक है प्रॉमिस। जब कोई रिश्ते में हम बनते हैं तो बहुत सारे प्रॉमिस कर लिया करते हैं, बगैर ये सोचे हुए कि ये प्रॉमिस हम पूरे कर पाएंगे कि नहीं, और ढेरों प्रॉमिस कर लेते हैं, और सामने वाला कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करता रहता है हमसे कि इतने प्रॉमिस किए हैं तो ज़रूर हम निभाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रॉमिसेस पे, उन वादों पे खरे नहीं उतरते हैं। रिश्ते में सब कुछ बहुत ज़रूरी है, प्यार ज़रूरी है और रिश्ते में केयर बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जो वादे किए जाते हैं ना, और ये जो वादे पूरे नहीं हो पाते हैं, इनसे सामने वाला जो है कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो इसीलिए आप वादे कीजिए, लेकिन वो वादे जो आप निभा पाए, और आज इसी बारे में बात होंगी। शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत। अगला गाना है फिल्म कल हो ना हो से।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी जिलायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स OTP सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे

प्रतिभा सिंह की आवाज में है ये गाना कि वो मानता ही नहीं हम सफर तो क्या कीजिए, हर एक दुआ है गर बेअसर तो क्या कीजिए, और नजर की राह में यूं तो कई नजारे हैं पर तुम ही पे जाके जो ठहरी नजर तो क्या कीजिए। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्कबाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत, और आपने वो गाना सुना है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो जो वादे किए हैं ना किसी से वो निभाने तो पड़ेंगे, और कई लोगों को वादों पर एतबार नहीं होता, जानते हैं ही टूट सकते हैं, फिर भी प्यार में डूबे लोग वादा करने में कोई परहेज नहीं करते, बहुत सारी कस्में खाते हैं, बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं, लेकिन वादे जो हैं वो या तो रिश्तों को एक बहुत अच्छी जगह पे ले जा सकते हैं, और वो कौन कौन से वादे हैं जो रिश्तों को खोखला कर देते हैं। जैसे एक वादे के टूटने से होती है रिश्ता टूटने की शुरुआत, और ये स्टडी भी बताती है कि इंसान दिन में 15,000 से ज्यादा शब्द बोलता है। इस दौरान लौट कर आने, फिर मिलने, जिंदगी भर साथ निभाने वाले जैसे तमाम वादे भी किए जाते हैं, लेकिन बात यह भी है कि इन 15,000 शब्दों में से सिर्फ कुछ 100 शब्द लोगों को अगले हफ्ते तक जोड़े रखते हैं। ये बहुत सारे वादे होते हैं कि मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऑल्दो सामने वाले का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बढ़ रहा है इन वादों से, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी है कि यार ये वादे टूट ना जाए। तो आज इन्हीं वादों पर बातें हो रही हैं, शो है इश्कबाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।
2: क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं।

और इसी 90s मैशअप के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्कबाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत। और यहां पर बातें चल रही हैं प्यार में जो वादे किए जाते हैं उनको निभाना कितना जरूरी है यार। यूं तो लोग रिश्ते में चांद तारे तोड़ लाने और मौसम का रुख बदलने तक की बातें कर देते हैं, हालांकि ये सब पॉसिबल नहीं है। ये वादा करने वाला और जिससे वादा किया जा रहा है वो भी जानता है इनको, क्या ऐसा सिर्फ बोलने भर की बातें हैं, ये संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या होगा जब उन वादों को तोड़ दिया जाए जिसे पूरा करना पॉसिबल है, और सामने वाला आपसे एक होप लगाए बैठा है कि आप इन वादों को जरूर पूरा करेंगे। वैसे अगर एक भी वादा टूटता है ना तो सामने वाले इंसान का दिल टूट जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक वादे के टूटने के बाद एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की हर बात को एक अलग नजर से देखने लगता है कि यार एक प्रॉमिस तो पूरा किया नहीं गया और प्यार निभाएंगे। और आपको ये जो वादे होते हैं ना वो बड़बोलापन बना देते हैं, तो इसलिए आपको सोच समझ कर वादे करने चाहिए। फिलहाल वक्त है गाने का। शो इश्कबाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत। और यहां पर बातें चल रही हैं प्रॉमिसेस को लेकर। कई बार हम भावनाओं में बहकर ऐसे शब्दों का यूज कर लेते हैं जो वास्तविक जिंदगी में पॉसिबल नहीं है, और कुछ लोग इसे बहुत नॉर्मल मानते हैं कि बहुत नॉर्मल है, ठीक है वादा कर लिया तो क्या बड़ा कर दिया। लेकिन सामने वाले के दिमाग में ये बातें बस जाती हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब सामने वाला इसे सच मान बैठता है और सामने वाले से ऐसी एक्सपेक्टेशंस करने लगता है। एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इन्होंने बताया है कि वादे क्यों टूटते हैं, और इस पर इन्होंने एक बेस्ट रिसर्च स्पीच भी दी है। इसमें इन्होंने वादे टूटने का बहुत मेन रीजन बताया है कि भावनाओं में बहकर हम कुछ ऐसे शब्दों का यूज कर लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। इसीलिए जब भी किसी से आप वादा करें तो भावनाओं में बहकर ना करें, वो वादा करें जो एग्जैक्टली आप पूरा कर पाए, क्योंकि ये सामने वाले इंसान को तोड़ कर रख देता है। फिलहाल वक्त है गाने का, शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत।

मुखड़ा मुखड़ा।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

पंकज उदास की आवाज में है बहुत ही बेहतरीन सा गाना, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्कबाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और मैं आज दिल दिया गल्ला में आपसे यही कहूंगी कि वादे कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन वो बचकाने वादे मत कीजिए जिन्हें आप पूरा ना कर पाए। अब वो वादे कीजिए जिसे आप पूरा कर पाए, और सामने वाला अगर आपसे एक्सपेक्ट भी करे तो आप वक्त के साथ अपने वादों पर खरे उतर पाए। वरना लोग आपको ये कह देंगे कि आप अपनी बातों पर नहीं रहते, अपनी बातों को कहकर मुकर जाते हैं। इसीलिए आप कोई भी ऐसा वादा ना करें जो पूरा नहीं हो सकता है। अभी मेरे चलने का वक्त है, मैं मिलूंगी आपसे कल जहां ढेर सारी बातें करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: save life. पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है, तुझे

खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हक है।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यूदा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
1: अपना दिल तो
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ। रात बाकी बात बाकी।

चक्कर है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूं भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके है।

0: I hate water wasting रे, जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ए भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब सही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

झुमका लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599! Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा, ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी, सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी, फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशा है। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो
0: इरशाद।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय।

बेहतर है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर। बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

इस इलाके में नए आए हो साहब, क्योंकि हेलमेट पहन के राइड करने का रूल बच्चा बच्चा जानता है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

save life. पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.

बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: शादी का इरादा है,
1: शादी और तुमसे,
0: शादी का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना,
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं,
1: बाय बाय।
0: सुनो तो,
1: ना
0: सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: इसलिए।
1: अच्छा,
2: आए हैं तो काम भी बताइए,
0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
2: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: जीते थे तो क्या हसीन रात।

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, मेरा एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार तो निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

0: पहले जरा आप मुस्कुराई
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा अच्छा।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

कुमुराया मारे गिल कुमुराया उड़े तारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े मुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: डाल दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: पीजे सरकार।
1: थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: कोई
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
1: श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है, यानी कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है।